आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है सोमवार, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहले तिथि, तदनुसार दिनांक 22 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क

0: विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एस एल कंडारा। इसका भाग 5

आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनिएगा उजाले उनकी यादों के, रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे, 4 बजे आज शाम को पिटारा सेहत पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर, तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार डाक का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे, रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 227।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियां हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो, जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
2: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
2: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी जी।
2: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी
1: जी,
2: कई सारे एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों मैं, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
2: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब

0: उनके घर में तो उनके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाते,
0: हाँ, बजाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग से सिखाते
1: हैं
0: जी।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी।
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल है।

0: ये इस राग की शक्ल बनती है।
1: वाह,
0: तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी,
0: और इस
1: शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए।
0: देखिए, थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी।

0: पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: ले गए जी मोरा सावन।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिस्तरी गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी का लिखा गीत था और खयाम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है।

0: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। सुबह 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8 से आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 से होगा कार्यक्रम सुर संगम। 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें बातचीत का विषय होगा अल्पसंख्यकों हेतु संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता मिर्गी के कारण लक्षण और उपचार विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, उनसे बातचीत की है श्री संजय त्रिवेदी ने। साथ ही होगा प्यारा संगीत और कुछ स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। 9 आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10 से 11:55 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के साथ। 11:55 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 से आप फिर जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों के साथ और फिर सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 1 से हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 से होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। 2:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार और 2:30 से होगा हमारी बहनों का कार्यक्रम अंगना, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा हमारे विचार ही हमारा व्यक्तित्व। साथ ही बात करेंगे कचरा प्रबंधन, शुरुआत घर से ही और बचपन से ही। सुनेंगे वार्ता प्रकृति के साथ सांस्कृतिक परंपरा का अनुभव ग्रामीण पर्यटन विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर पल्लवी सिंह, लेक्चरर कृषि विशेषज्ञ अयोध्या। 3 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 3:30 से 5 तक आप जुड़े रहेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। शाम 5 से हम आपके लेकर हाजिर होंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को और सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा PM विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। करियर गाइडेंस में बात होगी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर पर। वार्ताकार होंगे दीपक कुमार पांडे, उनसे बातचीत की है दिशा पांडे ने। नजर डालेंगे रोजगार समाचार पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 6:10 से आप सुनेंगे फिल्मी लोकगीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी और 6:30 से होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के किसान भाइयों का कार्यक्रम। कृषि जगत का समय होगा 6:45 से, जिसमें चर्चा का विषय होगा मृदा स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान। साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता बदलते जलवायु परिवेश में कृषि वानिकी से आर्थिक समृद्धि। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अंजलि तिवारी, सहायक प्राध्यापक संवर्धन एवं वानिकी उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। सुनेंगे प्यारा सा लोक गीत, जानेंगे बाजार भाव और लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 7:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 8:15 पर आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के अयोध्या कार्यक्रमों के साथ, सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 से होगा कार्यक्रम महफिले गजल। 9:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। रात 10:30 से आप जुड़ जाएंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। कार्यक्रमों का समाचारों का अनुप्रसारण अपने निर्धारित समय पर किया जाएगा। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ी वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी

0: जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।

0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर स्टेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों

0: में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने रिले किया था हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एडिये मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
9: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
8: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
9: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
8: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: श्रोताओं, भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगीत वह माध्यम है जो मन को शांति और आत्मा को सुकून प्रदान करता है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक मधुर भक्तिमय गीत,

देता है और जीवन की राह को सरल बनाने का संदेश देता है। इसी सुंदर भावना को आगे बढ़ाते हुए अब समय है एक और मधुर प्रस्तुति का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला भक्तिमय गीत।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
7: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
8: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
7: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
8: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
7: ध्यान रहे मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
8: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
7: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
9: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
10: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, डॉलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
11: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमृत कलश आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। संगीत और भक्ति का यह संगम मन को एक नई ऊर्जा और आत्मिक आनंद प्रदान करता है। इसी आनंदमय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम में अगला भक्तिमय गीत।

श्रोताओं, भक्ति के रंग में रंगे ये मधुर गीत वातावरण को और भी पावन बना रहे हैं। आशा है कि यह संगीतमय प्रस्तुति आपके मन को सुकून और प्रसन्नता दे रही होगी। अब यह कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का आखिरी और विशेष भक्तिमय गीत कैलाश अनुज और पीयूषा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी बेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति, और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन

0: विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले JD वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। JD वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
1: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी, और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
0: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
3: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
3: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात 101.9 FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
6: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
9: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
8: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी

0: अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: श्रोताओं, संगीत की फिजा में आप समय है कुछ ऐसे अल्फाजों का जो दिल की गहराइयों को छू लेते हैं। भावनाओं, एहसासों और खूबसूरत अभिव्यक्ति से सजी एक प्यारी सी गजल लेकर हम हाजिर हैं। तो ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली गजल।

आप सुन रहे हैं हमारी यह संगीतमय प्रस्तुति। श्रोताओं, गजली केवल शब्दों का संगम नहीं होती, बल्कि वे दिल के जज्बातों की बड़ी खूबसूरती से बयां करती हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक प्यारी सी गजल।

सीधे आपके दिल में उतरेंगी। भावनाओं का एक ऐसा एहसास जो बहुत सारे दिलों को जोड़ता है। गजल आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम 101.9 FM बैंड पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम विविध रंगों का। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: साथ संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: नमस्कार श्रोताओं, कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ नया सीखने का और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। यदि हमारे विचार सकारात्मक हो तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं और नई ऊर्जा के साथ हम आपके बीच लेकर आए हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। अगले कुछ ही पलों में हम बात करेंगे समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े अनेक रोचक विषयों की, साथ ही सुनेंगे मन भावन गीत। तो आइए इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या का प्रिय कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या और आज की बात में हम चर्चा करेंगे श्रोताओं एक ऐसे विषय पर जो ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन से जुड़ा है। हमारा विषय है अल्पसंख्यक हेतु संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। श्रोताओं, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। देश के विकास में हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है और इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है ताकि समाज के सभी वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजगार केवल आय का साधन ही नहीं है बल्कि सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता की आधारशिला भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन मौसम की अनिश्चितता और सीमित संसाधनों के कारण अतिरिक्त आय के स्रोतों की आवश्यकता महसूस होती है। श्रोता, ऐसे में विभिन्न रोजगार परक योजनाएं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता करती है। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों के बाद युवा स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। इनके माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे छोटे व्यवसाय, दुकान, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प या अन्य उद्यम शुरू किए जा सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं बातचीत करती हैं, सामूहिक रूप से छोटे उद्योग स्थापित करती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। आज अनेक गांव में महिलाएं मसाला निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई कढ़ाई, खाद्य पदार्थ निर्माण और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर कार्य मिलता है और पलायन की समस्या भी कम होती है। श्रोताओं, जब समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनता है तभी वास्तविक और समावेशी विकास संभव होता है। रोजगार के अवसर, कौशल विकास और स्वरोजगार की पहल न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है बल्कि समाज को भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाती है। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज में के निर्माण में योगदान दें जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। श्रोताओं, आपने सुनी जानकारी अल्पसंख्यक हेतु संपूर्ण रोजगार योजनाओं के बारे में। किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए श्रोताओं रोजगार जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य। स्वस्थ नागरिक ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य से जुड़े कई

प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत

0: विषय ऐसे हैं जिनके बारे में आज भी लोगों में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। ऐसी ही एक समस्या है मिर्गी, जिसे लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां और गलत धारणाएं देखने को मिलती हैं, जबकि सही जानकारी, समय पर पहचान और उचित उपचार से मिर्गी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, उनसे बातचीत की है श्री संजय धर दिवे ने। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सुनते हैं विशेष भेंट वार्ता मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर।
1: मिर्गी, जिसको अंग्रेजी में एपिलेप्सी भी कहते हैं, अपस्मार भी कहते हैं, और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नामों से जानी जाती है, और न सिर्फ जानी जाती है बल्कि ढेर सारी भ्रांतियों को लेकर के भी चलती रहती है। तो ये मिर्गी क्या है, इसके

0: से बातचीत की है श्री संजय धर दिवे ने। तो ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सुनते हैं विशेष भेंट वार्ता मिर्गी के कारण लक्षण और उपचार विषय पर।
1: मिर्गी जिसको अंग्रेजी में एपिलेप्सी भी कहते हैं, अपस्मार भी कहते हैं, और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नामों से जानी जाती है, और न सिर्फ जानी जाती है बल्कि ढेर सारी भ्रांतियों को लेकर के भी चलती रहती है। तो ये मिर्गी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, और किस तरह से उपचारित कर सकते हैं हम लोग इसको, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है।
2: आकाशवाणी परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम और आकाशवाणी परिवार का हार्दिक आभार।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मिर्गी, आप भी सुने होंगे कि जब कोई अचानक तिलमिला करके गिर जाता है, बैठ जाता है, तो हर व्यक्ति वहां वैद्य हो जाता है, उपचार करने लगता है
2: जी जी,
1: और अनेक तरीके से। तो ये मिर्गी वाकई है क्या, क्या दिक्कतें होती है शरीर में जो अकस्मात आदमी का मुंह बंद हो जाता है, दांत बैठ जाते हैं?
2: देखिए, मिर्गी एक प्रकार का हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल पार्ट में, यानी न्यूरॉन से बना हुआ हमारा मस्तिष्क है
1: जी।
2: हमारे शरीर में जैसे विद्युत
1: बाहर प्रवाहित
2: में है, वैसे ही शरीर में हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा विद्युत तरंगे प्रवाहित होती है। और झटके आना एक सामान्य पहचान देखते हैं, शरीर झटक रहा है
1: जी, जी, जी।
2: तो ये झटके मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी तेज हो जाती है कि वो शरीर की मांसपेशियों की गति को अनियंत्रित कर देती है। वो सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर इसको मेडिकली हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसके हिसाब से एक विद्युत तरंगों का अत्यधिक जो असंतुलन है वो बढ़ जाने के कारण बार बार एक ही जैसे झटके आने की जो प्रवृत्ति है, या कई सारे डिसऑर्डर्स को जोड़ करके इसको मिर्गी के रूप में पहचान करते हैं। इसके लक्षण आपने बोला, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: बिल्कुल,
2: सामान्यतः देखिए, किसी भी उम्र में आजकल देखी जाती है, छोटे छोटे बच्चों में भी 20 से 25 साल में और 35 साल से ऊपर, यानी प्रौढ़ावस्था।
1: मेरे मन में जो जो प्रश्न आ रहे थे आपने अचानक तीनों वर्गों को खुद ही बताना शुरू
2: किया। जी जी, तो जन्म के समय बच्चों में अगर देखा जाता है तो दिखता है कि उसकी गर्दन ऐंठ गई या क्रीमिंग से एक आवाज, चीखने की जैसी आवाज आती है। अच्छा, मैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी ग्रांड माल, पेटिट माल या इस तरीके के क्लासिफाइड करते हैं, वो चिकित्सकों की पहचान के लिए कैसी अवस्था है, लेकिन जो जन सामान्य को समझने लायक स्थितियां हैं, जो फेज पैदा होती है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा विपरीत दिशा में बढ़कर उसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे।
1: बिल्कुल, ताकि लोग समझ,
2: ताकि लोगों को समझ में आ सके तो लक्षण कैसे पैदा हो रहे हैं, उसकी फेज कैसे आ रही है
1: जी।
2: और पहले कारण पे आते हैं
1: जी।
2: आयु वर्ग हो गया ना, सभी में हो सकता है। तो बच्चों में अगर 12 महीने से कम की अवस्था है तो उनको इन्फेंट बोला जाता है, नवजात शिशु।
1: नवजात शिशु,
2: उसके ऊपर चिल्ड्रंस 5 साल तक की अवस्था, और उसके बाद में वयस्क एडल्ट फेज, और उसके बाद 35 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर के जो प्रौढ़ावस्था, सभी में हो सकते हैं। अब शुरुआत हो सकती है अगर एडल्ट छोटे बच्चे में है, क्या कारण हो सकता है? कई बार होता है बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है लेकिन सिर के बल बाहर आया, तो हो सकता है सिर में कोई चोट लग गई हो,
1: हमको
2: हमने आपने उसमें ध्यान नहीं दिया
1: जी।
2: दूसरी अवस्था हो सकती है, कई बार बच्चे सांस लेने में देर से चीखता है, रो नहीं पाता है, मतलब सांस लेने में थोड़ी देरी हुई, यानी मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन था उसका लेवल काफी कम हुआ, डाउन हुआ, इस वजह से भी बाद में उसको सीजर आ सकते हैं। सीजर मतलब दौरा, दौरा को सामान्यतः झटका, दौरा एक अपने आप में ऐसा शब्द है जिसमें झटका एक उसका अंग है।
1: अच्छा, उसका एक अंग है,
2: अंग है, एक पार्ट है, एक फेज है झटके की, लेकिन दौरा एक
1: पूरे
2: लॉन्ग टाइम फेज है, उसको दौरा बोलते हैं, कब आना शुरू हुआ। इसी को समझेंगे तो हम एपिलेप्सी को ठीक से समझ पाएंगे
1: जी।
2: अब इसके एक कारण तो हो गया, कोई चोट चपेट हो सकती है, सिर में लगी, वयस्क है तो पुरानी चोट हो सकती है, बच्चों में बचपन से कोई हो सकती है,
1: बहुत दिनों बाद कोई चोट असर कर सकती है,
2: कर सकती है, या कोई जैसे आजकल क्या होता है कि अभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बच्चों में, मेनिनजाइटिस हो गई, जैपनीज एन्सेफलाइटिस हम लोग सुनते रहे, मस्तिष्क का ज्वर
1: नियंत्रण में है,
2: हाँ, मस्तिष्क का ज्वर, या ऐसा कोई भी संक्रमण, संक्रामक बीमारी जो लॉन्ग टर्म में पड़ी रही हो, हो सकता है वो एसिम्टोमेटिक हो चुकी हो, लेकिन उसके जो है आफ्टर इफेक्ट हमको दौरे के रूप में दिख सकते हैं। कभी कभी ट्यूमर हो सकता है, दिमाग में किसी हिस्से में कोई ट्यूमर है, कोई चोट पुरानी है, या कोई आनुवंशिक कारण भी इसके हो सकते हैं, मेंटल ट्रामा हो सकता है, बहुत अवसाद में, स्ट्रेस में रह रहे हैं, इस कारण भी हो सकता है, या कई सारी ऐसी दवाइयां हैं एलोपैथी
1: जो
2: या
1: अन्य
2: कारण जो हम जाने अनजाने ले देते हैं, ओवरडोजिंग हो गई है, लेकिन उसका असर हमारे जो हमारे लिए आवश्यक नहीं थी कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं
1: तो उसमें प्रभाव बाद में दिखाती है,
2: उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और बाद में किसी न किसी तरह से इस मिर्गी या झटके दौरे के

0: रूप में हमको दिखाई पड़ता है। ये तो हो गए कारण,
1: इतने सारे कारण हैं इसके,
0: किसी प्रकार का भी कोई कारण हो सकता है।
1: जी,
0: और सबको इडियोपैथिक एक कॉज बोलते हैं कि अज्ञात कारण है, कुछ नहीं पता चल, स्पष्ट कुछ जानकारी नहीं,
1: ऐसा हो सकता,
0: तब भी ऐसा हो सकता,
1: वो डायग्नोसिस का विषय रहता है,
0: डायग्नोसिस का।
1: सर, जब ये ऐसा होता है, कारण तो पता चल गया कि इन कारणों से हो सकता है, लेकिन लक्षण क्या होते हैं उसके?
0: लेकिन लक्षण कैसे पैदा हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम एपिलेप्सी को समझ भी पाएंगे। दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, क्या घटनाएं हो रही हैं शरीर में और उनसे कैसे लक्षण आ रहे हैं, तो एपिलेप्सी की क्या क्या फेज डिवाइड। दो प्रकार की एपिलेप्सी होती है, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने बताया किसी इन्फेक्शन की आदत की वजह से। अब प्राइमरी में भी दो प्रकार के ले सकते हैं, एक होता है जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जैसे हम चल रहे हैं अचानक से बेहोशी जैसे छाया, गिर पड़े और हमें कुछ ध्यान नहीं, फिर शरीर अकड़ गया, तो इसकी एक अवस्था है पूरी, जैसे टोनिक फेज है, क्लोनिक फेज है। अब ये दो शब्द बड़े कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, टोनिक क्या है और क्लोनिक क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं या मरीजों को बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाती है क्या अवस्था है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है और अचानक हमको दिखाई पड़ा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर उसके शरीर अकड़ गया, झटका आ गया, मुंह से झाग आ गया। इस प्रक्रिया के होने में जो अगर एक आध बार कभी दिन में आ रहा है झटका, तो हम एपिलेप्सी कह दें आवश्यक नहीं
1: है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिहाइड्रेशन हो गया, यूरिनिया हो गया, डायबिटिक है, किसी कोई डायबिटिक है, कोई चयापचयी क्रिया है, उस वजह से भी हमको अचानक हल्की सी बेहोशी आ गई, हम गिर पड़े। गिरने के बाद शरीर की अवस्थाएं निर्भर करती हैं लक्षणों के आधार पर। जैसे मान लीजिए जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है, एक बोलते हैं ग्रैंड मल एपिलेप्सी और पेटिट मल एपिलेप्सी। तो ग्रैंड मल में एक अवस्था थी प्रोडार्मल फेज, पहले हमको चेतावनी मिलती, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ था, जैसे खुद को, जैसे हमको नॉजियाटिक फील हो रहा है, मुंह का स्वाद ठीक नहीं आ रहा है, अजीब सी आवाज, आवाज में परिवर्तन लग रहा है, सुगंध ठीक से नहीं आ रही है, तो इससे ये प्रोडार्मल फेज है जो एक आध घंटे, दो तीन घंटे पहले से हमको पता चल सकती है, दिन भर ऐसा लग सकता है जो शुरुआती अवस्था में है। बाद में क्या होता है, हमको एक ऑरा डेवलप होता है, ऑरा डेवलप होने में सूंघने की क्षमता हमारी कमजोर हो गई है, दिखाई में विजुअलिटी सामने क्लियर नहीं है, या कुछ हम स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ पेट में हल्का सा मरोड़ सा दर्द, सा दर्द भी नहीं हो रहा लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ उठ रहा है, ये होता है ऑरा। फिर इसके बाद में टोनिक फेज आती है, टोनिक फेज टोन जैसे शब्द है कि एक कसाव पैदा होता है, मांसपेशियों में कसाव पैदा होगा, ये पूरी बॉडी में भी जनरलाइज हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि अभी हम बैठे और अचानक हमारी शरीर अकड़ने वाली है और हम गिर पड़े, बेहोश हो गए, यानी अनकॉन्सियसनेस इसमें आ गया, हमारा चेतना चली गई, हम चेतना शून्य हो गए, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सांस ऐसा लगता है रुक गई, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है और गला रुंध सा गया, गले में कुछ फंस सा गया है, इसकी वजह से 20-30 सेकंड अजीब सी आवाज निकालता है और फिर उसके बाद में चेहरा नीलापन, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, चेहरे पर शरीर में नीलापन आ सकता है,
1: फिर
0: शरीर में अकड़न पूरी ऐंठ सकती है और आंखें ऊपर की तरफ बढ़ जाती है।
1: जी।
0: तो ये होती टोनिक फेज, उसके बाद रिलैक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्लोनिक फेज। ये जब अकड़न पूरी तरह हो जाती है तो नर्वस सिस्टम, कोई अंग हमारा कांपने लगा, जबड़ा कांपने लगा, गर्दन अकड़ गई और कांपने लगी, सिर झटके देने लगा, हाथ पैर झटकने लगा, ये जो झटके देने वाली अवस्था है ये क्लोनिक फेज है, और क्लोनिक फेज के बाद में ही ये लगभग एक मिनट तक रह सकती है, और इसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, मरीज की स्थिति अवस्थी रहती है कि जबड़े हिल रहे हैं तो जीभ इधर उधर गई तो कट जाती है, खून आ जाता है, मुझे लार की सेक्रेशन बढ़ जाता है तो मुंह से झाग भी आ जाता है, तो ये अवस्था इसमें आती है क्लोनिक फेज में। फिर उसके बाद रिलैक्स होने लगता है, शरीर एक निढाल पड़ गया और व्यक्ति जो है शांत हो गया, जैसा लगता है कि बहुत देर से सो रहा है, ये रिलैक्सेशन की फेज है। और फिर पोस्ट एक्टैलिक फेज है, और उसमें क्या होता है, व्यक्ति उठा, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, दो तीन बार प्रश्न किया तो थोड़ा सा जवाब दिया, यानी एमनेशिया जैसी स्थिति की, वो स्मृति लोप हो गया, उसको याददाश्त नहीं क्या हुआ उस आधे घंटे, घंटे जब आधे घंटे तो नींद में पड़ा रह सकता है, लेकिन उसके बाद सिर भारीपन, दर्द, निद्रालु अवस्था में ऐसा लगा कभी काफी देर से सो रहा है और शरीर उसका टूटता हुआ उसको लगता है, लेकिन उससे पूछे क्या हुआ तो बता
1: सकता।
0: ये है ग्रैंड मल एपिलेप्सी। अब पेटिट मल इससे जुड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था कई बार होता है कि हम चेतना अवस्था में है, गिर पड़े और हमारा शरीर फिर से हम चेतना में आ गए, लेकिन गिरे थे, झटका आया, भूल गया, ये हो गई दूसरी अवस्था पेटिट मल। कई बार स्टेटस एपिलेप्टिकस एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि लगातार झटके आते रहते हैं,
1: थोड़ी थोड़ी देर पे
0: आते रहते हैं, एक दो घंटे दिन में कई बार आ गया, तो ये जो झटके अंग विशेष में ही जर्किंग महसूस हो रही, बार बार हो रही, निढाल हो जा रहा है, कसाव आ गया, तो ये एपिलेप्सी के पूरे सारे लक्षण मिल करके आते हैं और इसका कारण क्या है कि विद्युत तरंगे जो शरीर में प्रवाहित हो रही हैं वो उनका हाँ जो सेक्रीशन है उनका डिस्चार्ज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा।
1: इसका नियंत्रण कैसे होता है डॉक्टर? जैसे आपके पास

0: स्तर कोई मरीज आ गया और आपको ये सारे लक्षण उसके में दिखाई दिए गए
1: कि होम्योपैथी में मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ तो मैं तो उस हिसाब से देखता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। अब इसकी जांच कराई जा सकती है, जांच कराने में जैसे ईईजी करा लेते हैं, सीटी कराते हैं, अगर कोई पैथोलॉजिकल कॉज मिल रहा है तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ब्लड यूरिन या संक्रमण आदि की संभावनाएं क्या हो सकती है उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान तय होता है। आवश्यक हो सकता है तो विशेषज्ञ की सलाह भी ली जा सकती है, कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। एलोपैथी में तो एंटी एपिलेप्टिक दवाएं दी जाती हैं बच्चों में भी और उसमें, लेकिन होम्योपैथी जो है वो कॉज पे निर्भर करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज तो नहीं इसके पीछे, अनुवांशिक कारण आ रहा है, अगर कोई संक्रमण पुराना आ रहा है उसकी वजह से क्या समस्याएं, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, माइज्मेटिक फैक्टर क्या है, उनके हिसाब से हम लोग फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी एक मैं केस बताऊंगा, बच्चा था उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसको झटके ऐसे दिन में 2-3 बार आते थे, पिताजी की डेथ हो गई थी। कॉज हमको पता चला कि जब उसको 1 साल बाद उसके नाना की डेथ हुई उसने देखा तो किसी ने उसको बोला कि ये तो तुम्हारे पिताजी के पास चले गए। अब उस बच्चे को इतना ट्रामा लगा, सदमा लगा कि अपनी माँ से ही बोलना बंद कर दिया। और इस कारण को जब हम लोगों ने देखा कि इसको झटके इस कारण आ रहे हैं, उसके आधार पर एक दवा का सिलेक्शन होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जो ऐसे कंडीशंस में दी जाती है और सिर्फ 3-4 खुराक के बाद ही वो झटके आने उसको बंद हो गए, जबकि उसकी सीटी ईईजी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थी।
0: तो क्या होम्योपैथी में इसका निदान पूरी तरह संभव है?
1: जी, अगर कारण स्पष्ट मिलते हैं, लक्षण स्पष्ट मिलते हैं, मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है तो निश्चित रूप से पोटेंसी सिलेक्शन अगर बेटर है हमारा और मेडिसिन का सिलेक्शन अच्छा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है होम्योपैथी में।
0: यानी श्रोताओं, जो मिर्गी है इसका निदान तो हर पैथी में होता है, इसका निदान होम्योपैथी में भी हो सकता है यदि सही सही जानकारी अपने चिकित्सक को दिया जाए तो, और उचित दवाएं लेकर के और अपने डॉक्टर के निर्देशन में अगर आदमी काम करे तो इस बीमारी पर कंट्रोल किया जाए।
1: एक सामान्य जानकारी और हमको रहनी चाहिए कि अगर किसी को झटका आ गया तो हम कई बार देखते हैं कुछ चमड़े का सुंघा दो, कुछ नाक का सुंघा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उसको करवट लिटा दें
0: जी,
1: जिससे कि उसके जो जीभ है पीछे तरफ न फंसने पाए, सांस न रुकने पाए या जीभ दांतों के बीच में न आने पाए, इसका ध्यान देना चाहिए। उसको कसकर दबा देना, पकड़ लेना, झटके नहीं आने देना, ये नहीं करना चाहिए। बहुत हल्के हाथ से उसको
0: ढीले
1: कपड़े कर रखे, लेकिन करवट लिटा दे ताकि उसकी सांस लेने की मुंह खुला रहे, लार जो है वो बाहर आ जाए, फेफड़े की तरफ न जाने पाए, श्वास नली में न अटकने पाए, जिससे उसका जीवन बचाया जा सके।
0: यानी जब भी इस तरह कोई समस्या हो तो निकटतम चिकित्सक के पास तत्काल लेके।
1: हाँ, सामान्यता ये दौरे 1 मिनट में खत्म हो जाते, लेकिन अगर 5 मिनट तक रहता है कोई स्थिति ऐसी तुरंत उसको चिकित्सालय पहुंचाना चाहिए।
0: डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने मिर्गी के कारण, लक्षण और इससे बचाव उपचार के संबंध में हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी दी। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। वार्ताकार रहे डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, इनसे बातचीत की श्री संजय धर द्विवेदी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रणाम वैद्य में बातचीत और जानकारियों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले समय हो चला एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से विराम के बाद हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे बेहद प्यारा सा गीत और कुछ खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से।
3: पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सुनील वर्मा अब अयोध्या के यशलोक हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत,
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
6: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी।

0: अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेरिया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होने वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते हैं। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अन्ना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: छोटे से अंतराल के बाद फिर हाजिर है आपके साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। श्रोताओं, जीवन भावनाओं का एक सुंदर संगम है। कभी खुशियों की धूप हमारे आंगन को रोशन करती है तो कभी गम की छांव हमारे धैर्य और हौसले को पाट पड़ाती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के एक ऐसे रंग है जो हमारी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इन्हीं भावनाओं को खूबसूरती से बयां करता हमारा कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, चलते चलते कार्यक्रम में नजर डालते हैं समाचार पत्रों पे, क्या कुछ खास है हमारे शहर के समाचार पत्रों में। नीट यूजी पुनर्परीक्षा रविवार को जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच संपन्न हुई। एडीएम एफआर अमित भट्ट ने बताया कि परीक्षा में पंजीकृत 5,214 अभ्यर्थियों में से 4,800 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल उपस्थिति 90.5% रही। योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को सकारात्मक ऊर्जा का आधार है। यही बातें मुख्य अतिथि रूप में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने रविवार को राम की पैड़ी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में कही। सरयू नदी में संभावित बाढ़ और कटान में को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जबकि सदर तहसील में मांझा क्षेत्र में 2024 के बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों की समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। रायगढ़ स्थित जैन मंदिर में आयोजित भगवान सुब्रतनाथ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का वातावरण रविवार को आध्यात्मिक उल्लास और भक्तिभाव से सराबोर रहा। जनगणना की तैयारियों के तहत जिले में 22 मई से चल रहा मकान गणना एवं हाउस लिस्टिंग अभियान शनिवार को समाप्त हो गया। जिले में लगभग 99% मकानों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अभियान के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर मकानों, परिवारों और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम प्रणाम अध्यय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ कुछ नई जानकारी, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
0: प्रणाम अयोध्या। अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर।

0: यह सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप पे संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: श्रोतो कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में समय है आज की पहली फरमाइश का। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपकी पसंद पर यह खूबसूरत सा गीत

श्रोताओं एक आवश्यक सूचना, दिनांक 22 जून 2026 यानी आज ही के दिन सोमवार को शाम 5:30 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में चर्चा का विषय है गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी का नंबर, फोन नंबर है 7376804090। समय एक बार पुनः सुन ले, शाम 5:30 बजे 22 जून यानी आज ही के दिन सोमवार को। नंबर पुनः नोट कर ले 7376804090। सूचना समाप्त हुई। श्रोता एक बार फिर स्वागत है आपका और आप बारी है अगली फरमाइश की जो हमें भेजी है इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर बबलू अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटारिया और गौरैया चौक अंबाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया, बक्सर से राज एस डी वाली अंसारी। तो आइए आपकी पसंद को करते हैं कार्यक्रम में शामिल और इस संगीत में सफर को शानदार गीत के साथ।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। अगला संदेश हमें आया है मित्रनगर बीच शहर से। विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे और वैभव शिंदे, तो ये कार्यक्रम में शामिल करते हैं इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर और यह गीत सुनना चाहते हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव कोछापुरे गैवार बीकापुर जिला अयोध्या से। आपके प्यार और संदेशों के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद पर यह मधुर सा गीत।

और अब समय है आज की अंतिम फरमाइश का। यह संदेश हमें भेजा है कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रिवर भविष्टे, राहुल भविष्टे, अनीता भविष्टे। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आई और कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का यह अंतिम गीत और आनंद लेते हैं इस संगीतमय प्रस्तुति का।

0: Hello.
1: Hello. No. Telephone number. My number is
2: 7376804090.
3: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें 7376804090।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन
3: जग घूमे थारे जैसा न कोई
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान
2: तो देर क्यों जनाब किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर
0: ayodhyaakashwani@gmail.com
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोता, संगीत वो जादू है जो दिलों को जोड़ता है और आवाज वो रिश्ता है जो दूरियों को मिटाता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम बैंड आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। मैं हूं आपकी रेडियो सखी आरती और हम लेकर आए हैं ढेर सारी मस्ती भरी बातें और आपके दिल के करीब का गीत। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब बारी है आपकी आवाज की। हमें कॉल कीजिए 7376804090 पर और जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव। बताइए आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सुनाइए अपने दिल का सबसे पसंदीदा गीत। क्या पता आपका पसंदीदा गीत

0: पल रेडियो पर बच जाए तो देर किस बात की, उठाइए फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 7376804
1: को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: श्रोता, आइए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो,
6: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते सर, आपका नाम?
6: रिजवान बोल रहे हैं।
0: जी रिजवान जी, कहाँ से?
6: नाका से बोल रहे हैं, नाका अयोध्या से।
0: अच्छा, नाका अयोध्या से आप बात करें। आपको कार्यक्रम में कॉल किया है, आपकी किस गीत को सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
6: जी हेलो।
0: जी सर, आप अपना फिल्म का नाम बताएं।
6: पत्थर फूल का गाना, पत्थर के फूल का गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी, इसमें कौन सा गीत?
6: तुमको ही देख कर प्यार हुआ।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। आप क्या करते हैं रिजवान जी?
6: लिम्का कंपनी में काम करते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। अब आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
6: ठीक, थैंक यू मैम।
0: जी धन्यवाद।

0: अच्छा तो आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
1: हाँ मैम
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
1: जी मैम प्रियदर्शनी बोल रहे हैं बस्ती जिला से।
0: हाँ जी प्रियदर्शनी जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
1: जी मैम लैला मजनू फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: लैला मजनू फिल्म में कौन सा गीत?
1: तेरे दर पे आया हूँ।
0: जी आपको सुनवाती है ये गीत। आप ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैम हम पढ़ाई करते हैं।
0: जी आप पढ़ाई करती हैं, तो आपने अपना कुछ लक्ष्य सोचा होगा कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहती हैं?
1: जी डॉक्टर।
0: जी डॉक्टर बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं?
1: भैया ये बोल रहे थे कि डॉक्टर बन जाओ।
0: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत, और आप ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें।
1: जी मैम।

0: कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आपका नाम?
1: मैं नेहा भारती।
0: जी नेहा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: जी पढ़ाई करती हैं। पहले आप हमें बता दीजिए कि आपको किस फिल्म का गीत सुनना है, उसके बाद हम आपसे करेंगे कुछ प्यारी बातें।
1: मैम कुरुक्षेत्र का।
0: जी कुरुक्षेत्र फिल्म में कौन सा गाना?
1: वो आप गाना दिल धड़काना।
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आप पढ़ाई करती हैं, किस चीज की पढ़ाई तैयारी कर रही हैं आप?
1: मैम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और अभी एग्जाम दिए हैं एलटी मेंस का।
0: बहुत अच्छी बात है। आप कैसे तैयारी कर, हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी कि हमें कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी को कैसे करना चाहिए?
1: मैम कोई मतलब तैयारी करने से पहले तो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये सब कर लेंगे।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: और मतलब तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए अच्छे से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हमें पढ़ना क्या है पहले तो हमें यही जानना है। अगर हम अपने भरोसे को अपने पास रखें।
1: मैम आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि कहीं भी कोई भी भटक जाता है कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े कुछ समझ नहीं आता है, और इंसान ऐसे कई वीडियो दिन भर मतलब देखता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है।
0: बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी, हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आइए आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: थैंक यू।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219999।

0: वन पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, एल ओ के आर ए एन जी स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं।
1: तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: अंतराल के बाद आइए फिर से जुड़ दें हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
3: हेलो दीदी, नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार, आपका नाम?
3: ग्राम, जी ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह बरमार बोल रहा हूँ दीदी।
2: जी भगवान सिंह जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
3: दीदी मुझे पनाह फिल्म का सुनना है, गाने के बोल है तेरी पनाह में हमें रखना।
2: जी आपको बिल्कुल सुनवाएंगे ये गीत। आप क्या करते हैं?
3: दीदी खेती किसानी करते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है, खेती किसानी करते हैं आप। खेती किसानी इस समय किस चीज का फसल आपने उगाई है?
3: जी दीदी अब बरसात जब चालू हो जाएगी दीदी, हम सोयाबीन, मक्का, धान इनकी बुआई करेंगे। दीदी अभी बरसात नहीं हो रही है, फिर बरसात जब चालू होगी जब करेंगे।
2: जी बिल्कुल, आप किसानों की वजह से ही हम सभी को हर चीज बाजार में सही से उपलब्ध हो पाती है, तो इसके लिए आप सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।

0: श्रोता, आइए जुड़ते हैं हमारी अगली कॉलर से। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते सर, आपका नाम?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
1: जी डार्क द फायर फिल्म का लकी कबूतर।
0: जी लकी कबूतर गाना सुनना है आपको। आप क्या करते हैं?
1: जी मैं एक भजन गायक हूँ।
0: जी आप हमारे श्रोताओं को भजन के दो बोल सुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा। मैं एक भजन गायक के रूप में, मतलब हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: जी,
1: उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: क्योंकि आप सब लोग जब किसी भी पूजा पाठ में जब भजन गाते हैं तो उसकी प्रस्तुति और भी संगीतमय हो जाती है और मन भावन हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम ईश्वर के समक्ष एकदम पहुंच चुके हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कहते ना कि आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है।
1: जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब साउंड के साथ में भजन का प्रोग्राम करते हैं ना, तो मतलब जो श्रोता दर्शक होते हैं भजन प्रोग्राम सुनने वाले, उनको बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे मतलब एक माहौल सा बन जाता है भक्तिमय का।
0: बिल्कुल, भजन है ही जो हमारी सांसों के अंदर हमारे दिल तक पहुंचता है, जो हमारे दिल को जो होता है ना, आवाज जो होती है हमारे दिल तक जुड़ जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: वो सही है कि
1: तो
0: संगीत वो जादू है।
1: आपको भजन की
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत अच्छा
1: जी, जी.
0: बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: थैंक यू सो मच।

0: आखिरी कॉलर से। हेलो,
1: हाँ आदर जी, मैडम जी को प्यार वाला नमस्कार। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार सर। अशोक जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है? क्योंकि समय बहुत कम है तो आप जल्दी से बताएं।
1: जी जी जी मैडम, शोर मचाए शोर का एक डाल के तोता बोले।
0: हाँ जी, आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: शुद्ध इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आज का हमारा साथ यहीं तक। आशा है कि प्रस्तुति आपके दिन को कुछ बेहतर, कुछ सकारात्मक और कुछ यादगार बनाने में सफल रही होगी। याद रखिए श्रोताओं, जीवन में खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है जो मिला है उसकी कद्र कीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति कार्यक्रम को सफल बनाने में। कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दिया स्वप्निल जी ने। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ।
1: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
1: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
1: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
5: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले

0: हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी। तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गए तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर, और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा।

0: कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में. तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो. तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की. एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है. और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है. ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है. तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ. आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है.
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से.
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की. यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए.
0: राइट.
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब. तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक. और उन्हें वही करना था. ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं. तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा. पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी.
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था.
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया. लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है. और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना. बिकॉज पापा ऐसे थे, वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे. तो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा. इतना डर मम्मी को लग रहा था. तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी. तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी. तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है. और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी. तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में. पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे. तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है. और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं. हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम. तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे. और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई. लेकिन जिस

0: वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो, प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में है वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं। उतना सा खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी।
0: सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी है। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसे ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायत

0: इतनी इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी आणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनके एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई, माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह, क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है, अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज

0: हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत यह है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार, वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
1: और पापा के निर्देशन में।
0: एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को, क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर राम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्ना और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया, अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा। पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: गजब।
0: इट वाज हिज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला, बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरड़े जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेरड़े थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है, ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज, जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है, उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया, और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे, पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है, उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में।
1: हाँ जी।
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके, और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस

0: रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
1: क्या प्यारी बात है, वाह, यहाँ भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि

0: की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है. बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है. उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपसे सुनना चाहता हूँ.
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे.
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था. रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था. तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी. पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था. एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया. और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देयर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे.
0: गजब.
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी. तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था. जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो.
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही. तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था. दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली तब कैसे तैसे करके पापा ने

0: किराए का घर लिया था क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे.
1: किस इलाके में?
0: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने. बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था. तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है. तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है. तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर. उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम. उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए. तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए. उस समय चव्हाण साहब सीएम थे. उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया. उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए. तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला. तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग. जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं. तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया. तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: उसकी बात आगे करेंगे,
0: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गए था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो. तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है.
1: बिल्कुल. एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें.
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे. पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं.
1: बिल्कुल.
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से. और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है. तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला. और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे. हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था. तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा. तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत. तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड.
1: बिल्कुल बिल्कुल. एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है, उसकी मिसाल है अर्धसत्य. हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया.
0: राइट.
1: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी.
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए.
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी.
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे. तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे. तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त. तो

0: करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो. मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस yes. तरह से उन्होंने वो किया था. तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त. जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त. और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यशोदा लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो. रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई. तो इस तरह से वो दिखता है. तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था. ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है. बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त. और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई. आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए. और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है. वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है. 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में. अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था. और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो. ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी. तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: जो कसर रह गई
0: है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा.
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी. अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त. 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था. तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था. पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है. एग्जैक्टली. तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए है.
1: क्योंकि कोई रास्ता नहीं था.
0: एग्जैक्टली. पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ. तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट. और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर. मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था. तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था. इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा. और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से. तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है.
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी

0: खोज कर देखते हैं और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है। खोज कर अगर आप देखें तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
1: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की।
0: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ
1: यहाँ पर। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
0: क्या बात है, गुजर साहब के बोल।
1: ऑफ कोर्स
0: सुनते हैं ये गाना।

वाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है.
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम. अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं थी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू. रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में.
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी.
3: एक टुकड़ा धूप का.
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी.
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने. हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है. मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी.
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: रंग तरंग
0: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पिनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्राणी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार है बेनी सतामकर।

तो श्रोताओं, आशा जी के गाए कुछ बेहतरीन गीतों में से एक ये भी है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इस गीत के साथ थोड़ा बहुत झूमे नाचे गाए होंगे। चलिए, कार्यक्रम में एक और गीत, मंचला सा गीत हम शामिल कर रहे हैं, फिल्म साजन चले ससुराल से। सुनना चाहते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी कंच डुंडवारा से, देवेंद्र कुमार गुप्ता उघैती से, मुकेश गौतम चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, पुखराज बटगुजर नोखा राजस्थान से, अनिल वर्मा कुरावली से, मोहम्मद जाहिद अली कासगंज से, सिद्धार्थ गोंजे अमरावती से हैं, सैयद यूनुस मराठवाड़ा से, रामचंद माखीजा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, नरेंद्र शर्मा जेटली कलानौर से, विनोद लखनपाल करनाल से, कुंवर कृपाल सिंह आलोट मध्य प्रदेश से, एम अफसल ताज कोल सिटी बरकाकाना से हैं, दीपेश वर्मा सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं, और मीका विर्क रोपड़ पंजाब से। आप सबके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म साजन चले ससुराल का ये गीत।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
3: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
3: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
3: छोटा सा प्रयास, बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
5: श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:41 हुए हैं और हमारे कार्यक्रम में अभी कुछ और गीत बाकी हैं हमारे श्रोताओं की पसंद पर। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक सूचना आपको दे दें, आज शाम 5:30 से हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का नंबर 7376804090। कार्यक्रम का समय याद रखिए आज शाम 5:30 से 6 बजे के बीच। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपके लिए लाए हैं एक संजीदा गीत, फिल्म का नाम है मासूम। और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम हैं राजपाल मलोट पंजाब से, धीरज भाई रबारी गुजरात से, दातार सिंह सीकर राजस्थान से, अजित कसाना मुरादाबाद से, संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से, फहीम मंसूरी बांदा उत्तर प्रदेश से, रणधीर गुप्ता संगम विहार दिल्ली से, रोहित लक्ष्मी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुखिंदर सिंह जोड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, विनोद बारासा श्रीगंगानगर से, नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से, बालकरण वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राघव बाघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, सदाशिव थोरात पूर्णा महाराष्ट्र से और सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात से। आप सबके लिए फिल्म मासूम का ये गीत।

तो जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज पर अपनी पसंद लेकर हमें भेजना चाहते हैं, आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर अपनी पसंद का गीत, फिल्म का नाम अपने नाम के साथ हमें लिखकर भेज दें, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे कुछ तुमने कहा के अंतर्गत। तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गीत हम लाए हैं अपने इन श्रोताओं की पसंद पर। ताज अंसारी लक्सर हरिद्वार से, रविंद्र दास किशनगंज बिहार से, बाबू भाई उदयपुर राजस्थान से, नरेन नेतम पथरिया छत्तीसगढ़ से, राजू माठे जलगांव महाराष्ट्र से, विनोद मूड़त उज्जैन मध्य प्रदेश से, किशन सबका

बीट शहर से हैं, राजकुमार डूडी हिसार से, रूपेश संघई पड़भड़ी महाराष्ट्र से, हरजिंदर छिंदा नथाना पंजाब से, राजू मिगलानी दुर्गा कालोनी हांसी से हैं, चेतन साहू छत्तीसगढ़ से, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं, विनायक बेंडे आकोट से, रश्मि पंड्या राजकोट गुजरात से। आप सबके लिए है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का गीत।

0: साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसे आकाशवाणी अयोध्या और हमारे श्रोताओं का साथ हमेशा कहे, वैसे ही हमारे श्रोताओं का आकाशवाणी अयोध्या के साथ भी हमेशा कहे।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है आज के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, मीरा का मोहन। इस फिल्म का गीत हमने आपके लिए चुना है और हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से, एसके अलबख्शन निजामाबाद से, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र नारंग डबवाली से, राशिद हुसैन अंसारी कुरावली से, जसबीर सिंह जींद हरियाणा से, इरशाद अहमद जौनपुर से, अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, रामेंद्र भूषण आपने अपना पता नहीं लिखा है, अगली बार लिखिए, अपना पता जरूर लिखिए, हमें पता चले कि हमारे श्रोता कहाँ से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। बसंतलाल लिखते हैं कलकत्ता से, टीडी मल्होत्रा चंडीगढ़ से, हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, जीके परमार गांधीनगर गुजरात से, अभिजीत गहाड़कर उमर खेड़ा महाराष्ट्र से, राजेश सांबले संभाजी नगर से, सुरेश जाधव पैठर से, खिल्लू परवेज लखनऊ से, उमेश कुमार गौड़ आपने भी अपना पता नहीं लिखा है, और सीताराम कांगड़ा हैं रोहतक से। मीरा का मोहन फिल्म का गीत आप सबके लिए।

तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के साथ आपका दिन भी मस्ताना बीतेगा। हमारे उन सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज के कार्यक्रम में भाग लिया, और साथ ही उन सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम को सुना। हमारे सभी कार्यक्रमों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के कार्यक्रम से

0: कार्यक्रम कुछ तुमने कहा श्रोताओं ने सुना आकाशवाणी अयोध्या से। दोपहर के 2 बजे हैं, अब हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीत गजल कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिया मार आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
6: आए आए
0: आज के कार्यक्रम गीतांजलि में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ गीत और एक गजल। पहले हम आपको सुनवाते हैं अमित त्रिवेदी और साधियों की आवाज में ये गीत।

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम।

0: ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी न जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल। और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़े का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
1: उसी में,
0: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: और जैसे शाम होने लगे उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर की वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिये की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही,

0: हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भुरकना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये

0: आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है, सबको नहीं किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
0: सो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है, हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण हैं जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है, अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी। तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है, अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे OPD में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है
1: जी।
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
0: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे
1: जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है जब मैं

0: मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: मेरा। ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की, फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर

0: को जानते हैं और बड़े अनुभव का खजाना है, हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयां, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयां अभी अप्रूव हुई है, एक साल पहले हुई थी, अभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
0: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 150 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुन

0: सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए अपने श्रोताओं को।
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ।
0: जी,
1: थोड़ी बीट सुनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना।
0: क्या बात है,
1: मुझे पसंद है।
0: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटी, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ फेस।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके

0: मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते. मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है. और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में. तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है. इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो, अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाए और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, सोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
0: जी, जी, जी।
1: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो
0: जी। तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
1: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं।

0: कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है. तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो. उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है. माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं. अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा.
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है.
0: Correct.
1: और वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं. तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए.
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया.
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि जो समस्या है एसिडिटी की सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ। सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।

आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। यह है हम सब का हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या एफएम, जिसके कार्यक्रम एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर देश और दुनिया में सुने जा रहे हैं। आज सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ रहेगा 11:10 तक आपका रेडियो मीत अमरजीत, जो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या एफएम की आवाज। अपने सुनने वालों को बता दें कि आज शाम 5:30 से स्वास्थ्य संबंधी हेलो डॉक्टर कार्यक्रम होगा, जिसमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। टॉपिक रहेगा गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 7376804090, ये नंबर शाम 5:30 से लेकर 6:00 तक खुला रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन करेंगी सरस्वती पाठक और इंजीनियर रहेंगे विनोद चौधरी।

आकाशवाणी अयोध्या फिल्म की स्टूडियो वॉच में शाम के 5 बजने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले सुने युवाओं को संबोधित उनका कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज प्रेजेंट करेंगे दिशा पांडे, बस सबसे कुछ ही देर में।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।

And a very good evening, young India. Welcome back, friends, in your favorite program, Jovani. उम्मीद है आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, दिल में होंगे बड़े बड़े सपने और उन्हें पूरा करने का जबरदस्त जुनून. तो बस हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका अपना शो युवाणी आ चुका है पूरे जोश, नई ऊर्जा और ढेर सारी जानकारियों के साथ. मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें उन विषयों की जो आपके आज को बेहतर और आने वाले कल को सुनहरा बनाने का दम रखते हैं. दोस्तों, आज के चर्चा सेगमेंट में बात करेंगे पीएम विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इसके बाद होगा समय करियर गाइडेंस का, जहां सुनेंगे एक खास भेंट वार्ता और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर विषय पर. इस दिलचस्प बातचीत में हमारे साथ होंगे दीपक कुमार पांडे, जो बताएंगे कि ग्रीन एनर्जी की दुनिया में युवाओं के लिए संभावनाओं के कितने नए दरवाजे खुल रहे हैं. और सफर यही नहीं रुकेगा प्यारे दोस्तों, आगे होगा रोजगार समाचार, जहां मिलेंगी नौकरी से जुड़ी आपको नई नई अपडेट्स. साथ ही बजेंगे आपके पसंदीदा गीत, जो आपके मूड को बनाएंगे और भी शानदार. तो अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस बेहतरीन से सफर में. तो दोस्तों, सबसे पहले क्यों ना हम बात करें चर्चा की, जिसमें कि आज का विषय जो है वो है पीएम विकास, यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना. दोस्तों, पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की, दोस्तों प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना भारतीय कला और शिल्प के विरासत को संरक्षित और समृद्ध करते हुए कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक कारीगरों का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है. ये योजना कारीगरों को व्यापक सहायता प्रदान करने, स्थायी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान, कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है. जी हाँ दोस्तों, पीएम विकास योजना पारंपरिक प्रशिक्षण, उपघटक पारंपरिक कला और शिल्प में लगे अल्पसंख्यक कारीगर समुदायों के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करता है. आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि गैर पारंपरिक कौशल उपघटक NSQF के अनुरूप नौकरी की भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण देना है. दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देना है. जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है. जी हाँ, ये घटक योजना के उद्देश्य हेतु एक दूसरे के पूरक हैं, ताकि लाभार्थियों की आय में वृद्धि की जा सके और क्रेडिट तथा बाजार लिंकेज की सुविधा भी प्रदान की जा सके. दोस्तों, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित ये योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई. इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं, महिलाओं और कारीगरों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना और उन्हें स्वरोजगार एवं बेहतर रोजगार के अवसरों से जोड़ना है. आपको बता दें दोस्तों कि इस योजना का लाभ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के पात्र अभ्यर्थियों को दिया जाता है. इसका उद्देश्य उनकी पारंपरिक विरासत और हुनर को संरक्षित करना तथा उसे आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. प्यारे दोस्तों, बात विरासत की हो, हुनर की हो और नए अवसरों की हो, तो सफर यही नहीं रुकता. फिलहाल वक्त है इस खुशनुमा महफिल में थोड़े से सुरों और संगीत के रंग घोलने का. आप सुन रहे हैं युवावाणी और अब बारी है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की. तो आवाज को जरा बढ़ा दीजिए, मुस्कुराइए और तैयार हो जाइए प्यारे से गीत के इस खूबसूरत सफर के लिए.

0: दोस्तों गानों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फिर होगी मुलाकात नए विषय और नए अंदाज के साथ। सुनते रहिए युवाणी।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: दोस्तों हर युवा के मन में एक सपना होता है, कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का और एक अलग पहचान बनाने का। लेकिन सही मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दिशा और सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। यही सोचकर हर सोमवार हम लेकर आते हैं आपके लिए खास सेगमेंट करियर गाइडेंस, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे क्षेत्रों से जिनमें आपके सुनहरे भविष्य की अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर। इस विषय पर हमने बात की है दीपक।

0: कुमार पांडे से, तो आइए जानते हैं कि कैसे सूरज की किरणें ना सिर्फ धरती को रोशन कर रही हैं, बल्कि युवाओं के करियर को भी नई ऊंचाइयां दे रही हैं।
1: आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की जो न सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य को ऊर्जा दे रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और शानदार करियर के नए अवसर भी तैयार कर रहा है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी सेक्टर। बढ़ती तकनीक, सरकार की नई योजनाएं और ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाया है। ऐसे में बहुत से युवा ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोलर एनर्जी में करियर कैसे बनाया जाए और इसमें आगे बढ़ने के क्या अवसर हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पैका स्किल्स में इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग हेड के पद पर कार्यरत दीपक कुमार पांडे। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी क्या है।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि प्रकृति से बार बार मिलती रहती है। जैसे हम सूरज, हवा और पानी इस रूप में देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोलर एनर्जी
1: जी
2: सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, और इसमें हम सूरज की रोशनी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में बदलते हैं, जिससे घर, औद्योगिक क्षेत्रों और मशीनें चलती हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सूरज से सीधे बिजली बनाना ही सोलर एनर्जी है।
1: तो दीपक जी, ये बताइएगा कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है युवाओं के लिए, खास तौर पर क्योंकि ये टेक्निकल प्रश्न में आता है। और हम इसमें देखें तो एक कंप्लीट सोलर सिस्टम में मुख्य रूप से चार पार्ट होते हैं। सोलर पैनल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करके बिजली बनाता है। और दूसरा होता है इन्वर्टर
1: जी,
2: जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और तीसरा है बैटरी, जो बिजली को स्टोर करने के लिए रखते हैं, इसको ऑप्शनल है ये चीजें। और चौथा है माउंटिंग, जिसे इसमें माउंटिंग के अंदर वायरिंग सिस्टम पूरे सेटअप को सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है। और इस तरीके से देखा जाए कि एडवांस सिस्टम में मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जिससे मोबाइल से पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका वैज्ञानिक आधार जो हम देख सकते हैं टेक्निकल रूप से, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है, जिसमें सोलर पैनल के अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं उससे सूर्य की रोशनी को अब्सॉर्ब करके डीसी करंट बनाते हैं
1: जी।
2: और फिर इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदलता है, जिससे हम घर और उद्योग में इसका उपयोग करते हैं
1: जी।
2: यानी पूरा सिस्टम एक मिनी पावर प्लांट की तरह काम करता है। और इसमें भी तीन सिस्टम होते हैं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम, जो गवर्नमेंट ग्रिड से जुड़ा होता है
1: जी।
2: दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जहां बिजली नहीं होती है वहां पर प्रयोग करते हैं, बैटरी के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, तीनों को जोड़ करके हाइब्रिड सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो सबसे एडवांस और फ्यूचर रेडी सिस्टम है।
1: अच्छा, क्या बात है। आपसे जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आज के समय में सोलर एनर्जी का महत्व इतना क्यों बढ़ गया है।
2: बहुत अच्छा सवाल। आज बिजली की मांग लगातार बढ़ी रही है, और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोल सीमित हैं, और इससे प्रदूषण भी बढ़ते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो इस चीज को देखते हुए सोलर एनर्जी एक साफ, सस्ती और लंबे समय तक चलने वाला समाधान है। साथ ही सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले समय में या वर्तमान समय में ही देखा जाए इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है
1: जी।
2: और इसके पीछे तीन बड़े कारण है। पहला, एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है
1: जी।
2: दूसरा, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है। तीसरा, सबसे बड़ा जो कारण है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और पॉलिसीज बहुत आसान तरीके से लोगों को उपलब्ध हो पा रही हैं। और आज इंडस्ट्रीज और बड़े शहरों में बिजली की लागत बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में सोलर लगाने से लॉन्ग टर्म में लगभग 70% तक बिजली का खर्च कम हो सकता है। इसलिए कंपनियां इसे कॉस्ट सेविंग टूल के रूप में भी देख रही हैं, और देखा जा सकता है कि सिर्फ एनवायरमेंट के लिए ही नहीं, इसके लिए भी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है।
1: अच्छा, जैसे हमारे श्रोता सुन रहे होंगे आपकी बातों को, उसमें अपने करियर को भी बनाने के लिए सोच रहे होंगे।
2: बिल्कुल।
1: तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन?
2: बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो इसके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत होना जरूरी है।

0: और यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बेसिक रूप से जो हमारे युवा साथी होते हैं उनको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से होना जरूरी है, क्योंकि वे बेसिक जानकारी है इलेक्ट्रिकल के लिए
1: जी।
0: इसके साथ साथ डिप्लोमा कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से, उसके माध्यम से इसका बेस बना सकते हैं। इसके अलावा 3 से 6 महीने का सोलर या बैटरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें काफी सपोर्ट भी कर रही है
1: जी।
0: साथ ही साथ 6 महीने का फील्ड में काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यदि उनको कोई डिग्री या ऐसा समय नहीं है कि वो उसको ले पाए या वहां तक पहुंच पाए, तो फील्ड में भी काम करके एक्सपीरियंस लेकर के उसमें भी कर सकते हैं और इसके बाद आपका काम भी शुरू कर सकते हैं। और ये फील्ड देखा जाए तो एक प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये चीजें कि आप जितना कर रहे हैं उतना सीख रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 10वीं या 12वीं के बाद भी कोई भी युवा इस क्षेत्र में जुड़ सकता है, बस थोड़ी सी इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए और प्रैक्टिकल स्किल बहुत महत्वपूर्ण रखता है
1: जी, प्रैक्टिकल की काफी ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, ये तो बात रही प्रैक्टिकल स्किल्स की, अगर बात करें दीपक जी इस क्षेत्र में कोई स्पेशल कोर्स की तो क्या क्या उपलब्ध होंगे?
0: डिग्री के स्तर पर देखा जाए तो बीटेक इलेक्ट्रिकल या एनर्जी इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत सोलर इंस्टॉलेशन और बैटरी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस फील्ड में काम करने के लिए एडवांस स्किल की जरूरत होती है, जो शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स लेकर आते हैं। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें सोलर PV इंस्टॉलर सूर्य मित्र प्रोग्राम के माध्यम से काफी युवा जुड़ रहे हैं
1: जी।
0: इसके साथ साथ सोलर टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस के बारे में सभी छात्र इसके बारे में जानना चाहते हैं वो सीखते हैं। और इसमें 3 महीने से 6 महीने के कोर्स भी उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है और जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। तो ये सभी युवाओं के लिए अच्छा हो सकता है कि इस क्षेत्र में यदि करियर बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे सेक्शन का चुनाव करके इसमें अपना करियर अच्छा कर सकते।
1: दीपक जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि 3 से 6 महीने में इसके कोर्स कंप्लीट हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है, और तीसरी बात कि जॉब प्लेसमेंट का भी सपोर्ट रहता है।
0: हाँ।
1: अगला क्वेश्चन जो है आपसे हमारा वो है कि इस फील्ड में काम करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है?
0: जैसे सोलर पैनल लगाना हुआ, वायरिंग की जानकारी होना, इन्वर्टर का सेटअप जो करना है उसके बारे में अच्छी जानकारी होना
1: जी,
0: सिस्टम में क्या खराबी आ रही है, जो फॉल्ट आ रहा है उसको ढूंढकर ठीक करना
1: जी।
0: अगर कोई व्यक्ति ये स्किल अच्छे से सीख लेता है तो उसके लिए जॉब के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
1: आपने बात करी जॉब के अवसर की, तो जो रोजगार के अवसर है वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं?
0: देखिए, इसमें मौजूदा समय में देखा जाए तो काफी ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही हैं। तो सोलर कंपनियां कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी, इसके अलावा EV चार्जिंग, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम में, इसमें नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हर जगह देखा जाए, फैक्ट्री हुआ, बिल्डिंग हुआ, और भी कई जगह पर है जहां पर एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है, तो इसका बहुत ही मांग बढ़ता जा रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सरल शब्दों में कहूं तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी की ही नहीं देखा जाए तो करेंसी होगी, एक प्रकार की मुद्रा होगी लोगों के पास, और ये सोलर उसका सोर्स होगा
1: जी। दीपक जी, हमारी आदत ये होती है कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये घूमता है ना कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी।
0: बिल्कुल, खास तौर पर युवा सबसे पहले सोचते हैं कि इस काम को सीखेंगे या जानेंगे तो हमें प्रारंभिक समय में कितनी सैलरी मिलेगी। और ये जायज भी है, देखा जाए तो यदि बेसिक जानकारी सोलर के होता है उनको, युवाओं को, तो कहीं भी कार्य प्रारंभ करते हैं और कहीं पर जाते हैं तो 12 से 25 हजार तक रुपए उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे उनका कार्य का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। हमने कई युवाओं को देखा है जो लगभग 30,000 से 60,000 रुपए भी पा रहे हैं, और जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाता है उनकी सैलरी उनके अनुभव पर निर्भर करती है, और इस तरीके से काफी अच्छा उनको 1 लाख से ऊपर भी उनकी सैलरी हमने देखी कि ये बच्चे पाते हैं।
1: दीपक जी, क्या ये क्षेत्र जो है वो स्वरोजगार के लिए अच्छा है, अगर हम अपना कोई रोजगार इस क्षेत्र में शुरू करना चाहें तो?
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा इसमें स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा करियर होता जा रहा है, और जो छात्र या जो युवा इस क्षेत्र में जुड़ते हैं उनको एक अच्छा अनुभव हो जाता है इस क्षेत्र में, तो सोलर इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर सकते हैं, रूफ

0: टॉप सोलर बिजनेस कर सकते हैं या ईवी चार्जिंग सेटअप कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम निवेश में एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है।
1: फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी?
0: भविष्य में बहुत ही अच्छा इसका उज्जवल भविष्य है। आने वाले समय में हर घर में, हर इंडस्ट्री में सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हर क्षेत्र में स्किल की मांग रहेगी और खासतौर पर इस क्षेत्र में बहुत ही मांग बढ़ता जा रहा
1: है। दीपक जी, आपसे जो अगला प्रश्न वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये बताइए, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे हमारी बातें, तो मन में चल रहा होगा कि क्या कोई सरकार की तरफ से कोई योजना होगी इस क्षेत्र को लेकर?
0: बिल्कुल, इसमें सरकार की योजनाएं हैं जिसकी वजह से लोगों का रुझान इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से सोलर सब्सिडी दी जाती है और इसके साथ साथ रूफ टॉप सोलर स्कीम है जो कि पीएम सूर्य घर योजना इस समय चल रहा है काफी, और इसमें मुफ्त बिजली योजना, ऐसे कई उद्देश्य हैं जिसकी वजह से खर्च कम है तो उनको बहुत ही कम पैसा पड़ता है या जीरो पड़ता है बिल। नेट मीटरिंग का सिस्टम है जिसमें कमाई का भी मौका लोगों के पास रहता है कि उसमें जुड़ सकते हैं और अपना कमाई का भी एक माध्यम बना सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है और युवाओं के लिए स्किल इंडिया ट्रेनिंग सपोर्ट ऐसे प्रोग्राम को चला करके उनको युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करती है, स्टार्टअप और बिजनेस सपोर्ट भी करने का काम कर रही है। इंडस्ट्रियल लेवल पर भी सोलर के क्षेत्र में काफी अवसर हैं और इसमें काम गवर्नमेंट कर रही है। इसी के साथ जैसे फाइनल, तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी ऐसे स्कीम है जो गवर्नमेंट अपने इन क्षेत्रों में ध्यान दे करके लोगों को एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ आकर्षित कर रही है और लोगों को उस तरफ रुझान बढ़ रहा है और इस क्षेत्र के साथ जुड़ भी रहे हैं।
1: अंत में हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे दीपक जी?
0: मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि काफी युवा ऐसे होते हैं कि जो किसी अपने मित्र को, आसपास के लोगों को देख करके वो अपना करियर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मौजूदा समय में स्किल की मांग होती है उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागें बल्कि स्किल पर ध्यान दें। आज के समय में जो व्यक्ति नई तकनीक सीखता है वही आगे बढ़ता है। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेहनत करने वाले को कभी काम की कमी नहीं रहेगी। अंत में यही कहेंगे कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, प्रैक्टिकल स्किल सीखें और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आपका करियर बहुत उज्जवल हो सके और बहुत ही बेहतर हो सके।
1: जी बिल्कुल, दीपक जी आपने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करियर अवसर से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे काफी मदद मिलेगी। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्यारे दोस्तों, इस खास भेंट वार्ता से आपको नई दिशा और नई प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, सपनों को उड़ान देने के लिए जरूरी है सही अवसर और सही जानकारी की। तो अब वक्त हो चला है उस खास सेगमेंट का जिसका इंतजार हर युवा को रहता है। तो चलिए जल्दी से आपको बता दें कुछ वैकेंसीज के बारे में, यानी कि जॉब्स अपडेट। दोस्तों, पहली वैकेंसी है SBI PO, यानी कि SBI बैंक PO। आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। टोटल पोस्ट 1500 है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है sbi.bank.in। दूसरी वैकेंसी है NBEMS, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में ग्रुप ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकली हैं। अंतिम तिथि है आवेदन की 20 जुलाई 2026। कुल रिक्तियां हैं 53। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें natboard.edu.in पर। तीसरी वैकेंसी है HSSC CET ग्रुप डी, यानी कि हरियाणा कर्मचारी आयोग। इसमें 8000 प्लस रिक्तियां निकली हैं दोस्तों, तो मौका मत गवाइए, फटाफट से फॉर्म भर दीजिए और तैयारी कर लीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। ऑफिशियल वेबसाइट है, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं hssc.gov.in। दोस्तों, अगली वैकेंसी है CGPSC, यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। टोटल पोस्ट है 15। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.cg.gov.in। आज की अंतिम और पांचवी वैकेंसी है DSSB, यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026। कुल पोस्ट है 1979, जी हाँ 1979। ऑफिशियल वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in। दोस्तों, ये थी आज की जॉब्स अपडेट। ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप वहां पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों अब इजाजत लेने का समय करीब आ गया है।

इन जाने से पहले आपको बता दें कल के युवाड़ी कार्यक्रम की खास झलक। कल सेगमेंट चर्चा में बात होगी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। फिर जानेंगे भारतीय इतिहास में गदर आंदोलन के बारे में और कल रहेगा मंगलवार, तो हम आप पर करेंगे सवालों की बारिश, जिसका सही जवाब आपको लिख भेजना होगा हमें हमारी ईमेल आईडी yuvvanaiayodhya@gmail.com पर। अब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, तो जरा ठहरिए और इन ज्ञान की बातों से निकलकर सुरों की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि वक्त हो गया है एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। तो अपनी मुस्कान बनाए रखिए, दिल की धड़कनों को संगीत की ताल पर थिरकने दीजिए और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने के सफर को।

वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8303211 पर। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे को इजाजत। जल्द ही फिर

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

0: जीववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से आपने सुना। शाम के 5:30 हुए हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। आपकी फोन कॉल्स रिसीव करेंगे अमरजीत सिंह और कार्यक्रम का संचालन करेंगी सरस्वती पाठक। बस कुछ ही पलों में ये प्रोग्राम सुनिए।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। मैं हूँ सरस्वती।

0: पाठक और हमारा और आपका यह साथ बना रहेगा अगले 30 मिनट तक। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे और चौथे सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें हम किसी डॉक्टर को आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में और आपसे सीधी बातचीत कराते हैं टेलीफोन के माध्यम से। तो आज हमारा टेलीफोन नंबर सबसे पहले नोट कर लें, टेलीफोन नंबर है 7376804090 7376804090 7376804090। और जो हमने विषय लिया है आपसे बातचीत करने के लिए वो है गर्भावस्था व प्रसव के बाद की सामान्य समस्याएं और उनका समाधान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा पांडे जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: जी डॉक्टर, जैसा कि हमारा आज का विषय है गर्भावस्था व प्रसव के बाद की सामान्य समस्याएं और समाधान, हमारी बहनें हैं वो उनके लिए उनका स्त्रीत्व एक बहुत ही बड़ा वरदान है जो उन्हें उनकी पहचान दिलाता है, लेकिन हमारी बहनें चाहे किसी भी कारण से बहुत संकोच करती हैं। अपने आसपास भी हमने देखा है कि अगर वो अपनी इस तरह की कोई समस्या है तो पहली बात तो कहना नहीं चाहती हैं, दूसरी बात वो कहती भी हैं तो इतना शर्म और संकोच से कहती हैं कि आधी बातें छिपा ले जाती हैं। सबसे पहले हमारी बहनों को तो इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो अपनी इस समस्या को लेकर के क्यों शर्माती हैं, क्यों संकोच करती हैं और वो क्या करें?
1: देखिए, गर्भावस्था में बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, इसलिए कि आप जानते नहीं हैं कि इसमें क्या समस्या हो सकती है। देखिए, सिर्फ डॉक्टर से आप सिर्फ जांच नहीं कराता है, वो आपकी काउंसलिंग भी करता है, वो आपको ये बताता है कि कैसे आप स्वस्थ बच्चा पैदा करें। स्वस्थ बच्चे के साथ साथ आपको भी 9 महीने और बच्चा पैदा होने के बाद आपको भी कोई समस्या ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और ये भी जानकारी लें कि आपका बच्चा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं।
0: जी, अगर हम बात करें समस्या की तो एक तो महिलाओं को स्वयं कुछ समस्याएं आती हैं सामान्य रूप से, पहले हम उस पर बातचीत करेंगे और फिर शॉर्ट में बातचीत करेंगे कि जो बच्चा अंदर गर्भ में पल रहा है उसको किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और किस तरह से हम उसका समाधान करेंगे। तो पहले हम अपनी बहनों की जो समस्या है जो गर्भावस्था के समय उन्हें होती है उस पर बातचीत करेंगे, कौन सी समस्याएं उन्हें हो सकती हैं और किस तरह से उनको वो दूर करना है।
1: देखिए, पहले तो क्या होता है जो शुरुआत के दिन होते हैं
0: गर्भावस्था। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे एक क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारी किसी बहन का फोन आ गया है तो उससे पहले बातचीत कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
2: मैम, मेरा नाम आस्था है, मैं बस्ती से बोल रही हूँ।
0: जी आस्था जी, बताइए, बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर साहब सुन रही हैं आपको।
2: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
2: मैम, मेरे भाई के अंदर प्रेगनेंसी है तो उनको फर्स्ट टाइम में कब दिखाना चाहिए, अभी अगर जल्दी प्रेगनेंसी रुक गई है तो?
1: देखिए
2: ऐसा क्या होगा उनका?
1: देखिए ऐसा है कि जैसे ही उसको पता लगे कि उसकी प्रेगनेंसी रुक गई है या उसका महीना चढ़ गया है उसे तुरंत ही मिलना चाहिए। वैसे तो जो एंटीनेटल विजिट होती है उसका मैं आपको एक शेड्यूल बता दूं कि शुरुआत में 7 महीने तक हर महीने दिखाना चाहिए, 7 महीने के बाद यानी 28 हफ्ते के बाद 15 दिन में दिखाना चाहिए और 9वें महीने में हर हफ्ते दिखाना चाहिए। तो जैसे ही महीना चढ़े वो अपने यहाँ चाहे एक स्ट्रिप से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें और अपने नज़दीकी चिकित्सक को जाकर के हॉस्पिटल में CSC PSC या किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से जाके मिल लें।
2: जी मैम, गांव में लोग कहते हैं 3 महीने बाद दिखाना है।
1: नहीं नहीं, ये गलत बात है क्योंकि देखिए शुरू के 3 महीने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 6ठे महीने से लेके 11वें हफ्ते के बीच में ही बच्चे के अंग बनते हैं, तो उस बीच यदि आपको थायराइड है या आपके आपको जो है यूरिन में इन्फेक्शन है या आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका समय पे आप इलाज करा लेंगे तो उससे बच्चे पे कोई असर नहीं आएगा, इसलिए जैसे ही ये पता लगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज सोचता है कि हमारी प्रेगनेंसी रुकी है, बच्चा ठीक है और 3 महीने बाद जब दिखाने आता है तो बच्चे की धड़कन नहीं होती है या कभी कभी थैली खाली बनी होती है, बच्चा अंदर बना ही नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ये पता लगे कि बच्चा रुका है तुरंत उनको दिखाना चाहिए।
2: जी मैम, जी थैंक यू मैम।
0: जी आस्था जी, आप हमारी पूरी बातचीत को सुनते रहिएगा 6 बजे तक, अभी बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी जिससे हो सकता है कि जो चीज आपके दिमाग में ना आई हो उसका भी उत्तर आपको मिल जाए, ठीक है आस्था? तो सुनते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि आस्था जी का प्रश्न था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने भी सुना है कि बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि शुरुआत में दिखाने की

0: क्या जरूरत है, तो हम पहले के जो 3 महीने हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें क्या समस्याएं होती हैं, पहले उसी पर बातचीत कर लेते हैं।
1: देखिए पहले के 3 महीने में बहुत सारे मरीज जो हैं ये समस्या लेके आते हैं कि हमें उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो रही है, हमारी सांस फूलती है, हमें आलस आता है, भूख नहीं लगती है, कोई भी चीज को देखो खाने की तो इच्छा नहीं होती है। और कभी कभी पेशेंट ये भी लेके आता है कंप्लेन कि हमको ब्लीडिंग हो रही है या फिर हल्का सा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें अर्ली प्रेगनेंसी में यानी शुरू के 3 महीने में बहुत ही कॉमन होती हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हम लोग अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, एक कॉल और आ गई है उससे पहले बातचीत कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
2: हम पिंकी सिंह बोल रहे हैं अम्बेडकर नगर से।
0: हाँ पिंकी जी बताइए क्या समस्या है।
2: पूरे प्रेगनेंसी में कितनी बार दिखाना जरूरी होता है?
1: देखिए ऐसा है कि पूरी प्रेगनेंसी में 8 बार दिखाया जाता है, जिसमें कि पहले में शुरू के 28 हफ्ते तक 7 महीने तक हर महीने, और उसके बाद हर 15 दिन में, और 9वें महीने में हर हफ्ते दिखाना पड़ता है। लेकिन मिनिमम कम से कम आपकी 4 से 8 विजिट तो होनी ही चाहिए।
0: जी पिंकी जी, और कोई समस्या है आपकी?
2: पैर में स्वेलिंग भी है।
0: स्वेलिंग है कह रही
1: है। अच्छा देखिए, पैर में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण तो ये होता है कि शुरू जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें जो है यूट्रस नीचे की नसों को कुछ दबाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता है और पैरों में सूजन हो जाती है। लेकिन ये तो फिजियोलॉजिकल कॉज है, इसके सिवा खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या डायबिटिक होना, या कोई भी किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित बीमारी हो तो उसमें भी पैरों में सूजन हो सकती है। तो इसके लिए यह है कि सूजन हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलिए और इसका कारण जानने की कोशिश करिए। सूजन का अच्छा तरीका यह है कि कोशिश करें कि पैरों में ज्यादा सूजन हो तो ज्यादा देर खड़े ना रहें, जितना हो सके बैठने का काम करें, और रात में सोते समय पैरों के पंजों के नीचे तकिया लगा लें।
0: जी पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और कुछ पूछना चाहती हैं आप?
2: नहीं बस।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी बातचीत को सुनते रहिएगा, ठीक है, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि चाहे वो हमारे भाई बंधु हो, चाहे फिर हमारी बहनें हो, बिना किसी संकोच के आप फोन करिए। हमारा विषय है गर्भावस्था व प्रसव के बाद की सामान्य समस्याएं व समाधान। अगर आपके घर में कोई भी, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपके घर में कोई भी अगर प्रेगनेंसी के का समय है या फिर प्रेगनेंसी के बाद का यानी प्रसव के बाद का भी समय है और कोई भी समस्या है तो आप कॉल जरूर कर लें। जी हम लोग बातचीत कर रहे थे समस्याओं की, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं?
1: पहले में तो मैंने बताया जैसे ये सब समस्याएं आती हैं, दूसरे ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की संभावना हो सकती है। वैसे जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है यानी 4th से 6th महीना वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, तो उस बीच ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है। लेकिन बस ये है कि ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, जिस तरह की जनरल समस्याएं ये सेकंड ट्राइमेस्टर में होने की संभावना होती है।
0: जी बातचीत जारी रहेगी, उससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो।
3: हेलो जी,
0: गुड इवनिंग
3: मैम। मुझे 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है तो मेरा फास्ट फूड और स्पाइसी ज्यादा खाने का मन होता है।
0: जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैम मेरा नाम सुजाता है, मैं अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: सुजाता जी को 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है।
1: देखिए ऐसा होता है कि इस समय जो है प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि खाने का मन नहीं करता है, और कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमको खाना देखते ही जी मचलाने लगता है। कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत थूक हो जाता है, थूक होने लगता है, ये भी एक खुद देखा गया है। आज तो मेरे पास पेशेंट एक आई थी जो बता रही थी मुझे अचानक नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, जबकि प्योर वेजिटेरियन है।
3: स्पाइसी और फास्ट फूड खाने का मन
1: जी नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है कि आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो आपको पसंद है वो खाइए, बस ये कोशिश करिए कि ये घर का बना हुआ हो ताकि इससे कोई और परेशानी ना हो। और यदि आपको गैस्ट्राइटिस या कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इस पर इस समय प्रिकॉशन रखिए, सावधानी रखिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी हमसे जुड़ने के लिए। जी तीसरे ट्राइमेस्टर में किस तरह की समस्या आ सकती है?
1: तीसरा जो है, तीसरा 3 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि तीसरे 3 महीने में ही सारी ज्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी को।
0: जी.
1: तो इसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यदि खेड़ी नीचे है या खेड़ी DHH हो गई है तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर की संभावना हो सकती है, शुगर वगैरह सब है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और तीसरे ट्राइमेस्टर मिस्टर

0: भी यदि कोई पेशेंट है उसको पता नहीं है कि उसको हार्ट डिजीज है या हार्ट पे लोड पड़ रहा है या उसको खून की कमी है, तो सांस फूलने की इस तरह की संभावना होने की बहुत चांसेस होते हैं। यदि पेट में पानी ज्यादा है या दो बच्चे हैं तो सांस फूल सकती है, कमजोरी लग सकती है, थकान लग सकती है।
1: जी जी जी, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पहले नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
2: मैम, मेरा नाम रूबी पाठक है, मैं गुसाईगंज से बोल रही हूँ।
1: गुसाईगंज से बोल रही हैं रूबी पाठक जी। हाँ जी, बताइए।
2: मैम, मुझे 8 महीने की प्रेगनेंसी है
1: जी,
2: और इधर जो है 10 दिन से मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दाने हैं और खुजली बहुत ज्यादा होती है
1: जी। आप थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए, बहुत इको कर रही है आपकी आवाज़ रूबी जी। हाँ, थोड़ी सी रेडियो सेट से दूर हो जाइए, बहुत इको।

0: रूबी जी, हाँ थोड़ी सी रेडियो सेट से दूर हो जाइए, बहुत इको कर रही है आपकी आवाज।
1: मैम मैं कह रही थी कि मुझे
0: 8 महीने की प्रेगनेंसी है। 8 महीने की प्रेगनेंसी है,
2: खुजली हो रही है और दाने हो गए शरीर में। जी देखिए, इस समय आप रूबी जी बोल रहे हैं?
0: हाँ रूबी जी बोल रही।
2: हाँ तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उसकी वजह से शरीर से पसीना बहुत आता है और खुजली होने के बहुत संभावना हो जाती है। वैसे भी लास्ट के जो महीने होते हैं 2-3 महीने, उसमें नॉर्मली भी प्रेग्नेंट लेडीज को खुजली की शिकायत बढ़ जाती है। कुछ लीवर के एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इचिंग होती है। इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। खाने में कोशिश करें कि आप जो है मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, सादा खाना खाएं। थोड़ा सा शरीर को पसीने वगैरह से पसीना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ठंडे में रहें या फिर आप एक दो बार नहा लें, जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो।
0: जी रूबी जी, और कुछ पूछना है आपको? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जो रूबी जी का सवाल था, इचिंग की प्रॉब्लम, ये हमें लगता है थर्ड ट्राइमेस्टर की समस्या है, तो इसमें क्या कोई मेडिसिन वगैरह भी हम ले सकते हैं?
2: देखिए, इसमें हम लोग कुछ तो लोशन ऐसे देते हैं जो थोड़ा सा बॉडी को काम रखें। वैसे हमने ये देखा है ज़्यादातर केसेस में कि लास्ट मैंने वैसे के बताया कि 8वें 9वें महीने में जो लीवर एंजाइम्स कुछ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे का उस समय लीवर वगैरह अच्छे से काम नहीं करता, तो बच्चे के जो खून साफ करने की जिम्मेदारी वो माँ के लीवर पे ही होती है। तो इस वजह से जो माँ के ब्लड में कुछ ये लीवर एंजाइम्स बढ़ जाने की वजह से इचिंग होने लगती है, तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे बता रहे हैं जैसे कैलामाइन लोशन वगैरह एडवाइस करते हैं, और यदि ज्यादा खुजली हो तो उसमें एंटी एलर्जिक हम लोग एडवाइस करते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हम अपने जो हमारी बातचीत का दूसरा पार्ट है, प्रसव के बाद की समस्या, उस पर हम बातचीत शुरू करेंगे। उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
3: जी मानसी यादव बोल रही हूं, जैसे मानसी यादव।
0: जी मानसी यादव जी बताइए, क्या समस्या है, डॉक्टर साहब सुन रही हैं?
3: जी जी मुझे 4 महीने की प्रेगनेंसी है और मूवमेंट का फील नहीं होता है, इसलिए मैम से बात करनी
2: है। मानसी आपका ये कौन सा बच्चा है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा बच्चा है?
3: फर्स्ट।
2: हाँ बेटा, ऐसा होता है कि फर्स्ट महीने में 4 महीने में नहीं पता लगता है इसको, जो है मूवमेंट फील होने को हम लोग के मेडिकल टर्म में क्विकनिंग बोलते हैं। ये पहले बच्चे में करीब 22 हफ्ते से पता लगती है, यानी 5.5 महीने के आसपास आपको लगेगा कि पेट में ट्विंगलिंग हो रही है, ऐसा लगेगा आपको कि कोई चीज यहाँ से वहां शिफ्ट हो रही है। तो आप 4 महीने की प्रेगनेंसी आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होइए, जहां आपका 5.5 महीना होगा तो आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन आप अपनी जांच कराते रहिए ताकि ये पता रहे कि बच्चा अंदर स्वस्थ है।
3: जी
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मानसी जी। जी डॉक्टर, एक बार हम चाहते हैं कि प्रसव के बाद की समस्याओं पर बात करने से पहले शॉर्ट में ही जान लें कि कौन सी जांचें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बच्चा अंदर पल रहा है उसको तो कोई समस्या नहीं है, वो जानने के लिए कौन सी जांचें हैं?
2: देखिए सबसे पहले जरूरी है कि आप माँ का क्या जांचें होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसमें उसका पूरा हीमोग्लोबिन से लेकर सारी ब्लड की रूटीन जाँच होती है वो कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, थायराइड कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, लीवर की मतलब किडनी लीवर सब ठीक है कि नहीं, और कुछ वायरल मार्कर होते हैं कि जैसे मरीज को हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना उचित नहीं होता है। यूरिन की जांच कराते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ कई बार जो है अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके सिवा हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है अल्ट्रासाउंड कराना। शुरुआत में हम लोग बच्चे की धड़कन देखने के लिए करीब 6 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें 2-3 चीजें पता लगती। पहली बात तो ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूरिन टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, प्रेगनेंसी होती नहीं और स्ट्रिप में 2 लाइन दिखाने लगती है। तो इसलिए 6 हफ्ते में आप अल्ट्रासाउंड जब कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में ये पता लगता है कि बच्चा यूट्रस में है, बच्चा कितने दिन का है और बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं।
0: जी डॉक्टर साहब, हम अपनी इस जांच की पॉइंट को अभी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
4: हेलो
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है,
4: नमस्कार, नाम बताएं। मैं मीनू शुक्ला बोल रही हूँ अयोध्या से।
0: जी मीनू जी,
4: मेरा मतलब जी मेरा प्रसव के बाद से मतलब मेरी कंपनी बहुत ही दर्द होता है और मेरे पैरों में भी बहुत झंझनाहट और दर्द सी रहती है, इसके लिए कुछ बताएं।
2: मीनू जी आपने जो है अपने 9 महीने में आपने अच्छे से कैल्शियम वगैरह की गोली ली थी?
4: जी जी मैंने कैल्शियम आयरन लिया था।
2: जी ठीक है, अच्छी बात।
4: वो एनेस्थीसिया का लगा पीछे बैक में,
2: जी
4: तो
2: जी
4: तब से कुछ ज्यादा ही मुझे कमर में पेन रहती है।
2: जी जी देखिए, इसके लिए जो है

0: ये कहना चाहूंगी आपसे कि बच्चा होने के बाद भी कंटिन्यूअसली जब तक बच्चा दूध पीता है कैल्शियम की गोली लेते रहना चाहिए, ठीक है। आप अपना कैल्शियम की लीजिए, साथ में मल्टी विटामिन लीजिए। जो आपके पैरों में दर्द होता है वो कैल्शियम विटामिन D3 की कमी से और विटामिन्स की कमी से होता है। इस समय गर्मी बहुत हो रही है तो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स भी पसीने में बहुत निकलते हैं, तो कुछ भी है जैसे इलेक्ट्रोल है, नहीं तो नींबू की शिकंजी है, नींबू नमक मिला के वो आप ले लीजिए तो आपको इसमें ज़रूर आराम मिलेगा।
1: जी मीनू जी, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए।
2: नहीं, थैंक यू
1: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जांचों की हम बात कर रहे थे शॉर्ट में, छठे हफ्ते पर आपने बताया कि जांच करते हैं, उसके बाद और कौन सी जांचें हैं?
0: जी हाँ, अब तो देखिए कि अब तो इतना मेडिकल एडवांस हो गया है कि उसकी वजह से अब हम लोगों को पहले ही ये पता लग जाता है डिलीवरी। पहले क्या होता था, बहुत अपंग बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि इतनी अच्छी अच्छी जांचें हो गई हैं जिससे बच्चों में कोई भी जेनेटिक बीमारी है या बच्चे में कोई भी अपंगता है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो ये हम लोगों को समय से पता लग जाता है कि बच्चे को हम पहले ही उसको बच्चे को हटा सकते हैं ताकि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन लेकर के बच्चा ना कोई हो जो आगे भविष्य जिसके बहुत उज्जवल तो नहीं होगा ऐसे बच्चे का इस वजह से। जी
1: जी, प्रसव के बाद की अगर हम समस्या करें की बात करें जी।
0: अच्छा मैं एक चीज और भी ये बताना चाहूंगी कि जांचें कौन सी होती हैं। जी ये बहुत जरूरी जांच है कि ये बात बहुत जरूरी भी है कि देखिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जब ये खत्म होने लगता है तब एक अल्ट्रासाउंड होता है और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको एंटी स्कैन और डबल मार्कर कहते हैं।
1: ये डॉक्टर साहब हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे श्रोता जुड़ना चाहते हैं तो हमें रुकना पड़ता है थोड़ा सा। हेलो
3: हेलो
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
3: जी मेरा नाम सुनीता है, देवकाली से बोल रही हूँ।
1: हाँ सुनीता जी बताइए।
3: मैं ये जानना चाह रही थी जैसे 3 महीने की प्रेगनेंसी है तो मुझे बहुत ही उल्टी जैसा महसूस होता है, खाने का भी कुछ नहीं मन करता है, तो क्या करना चाहिए?
0: देखिए सुनीता जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ने शुरू के 3 महीने में उल्टी होना बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है या बहुत ही कॉमन परेशानी है लोगों के लिए, तो इसके लिए आपको आपने जिस भी चिकित्सक को दिखाया होगा उसको उसने आपको शायद उल्टी की दवा लिखी होगी। और सबसे अच्छा इसमें ये होता है कि पहली बात तो आप वो चीज़ खाइए जो आपको पचे या जिसकी जिसको देख के आपको इच्छा हो खाने की। कभी भी ऐसी चीज़ मत लीजिए जो आपको इच्छा नहीं हो रही है लेकिन आप ये सोच रही कि नहीं ये ताकत की है तो हमें लेना होगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हो जाता है हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप उल्टी को रोक नहीं सकते हैं। तो इस वजह से आप यदि अपनी पसंद की चीज़ खाएंगी तो आपको उल्टी कम होगी। और एक बहुत बहुत सारे मरीज इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो हमारा एकदम उठते ही सर चकराने लगता और उल्टी होने लगती, तो इसका मेरा एक बहुत ही साधारण सा एक मैं उपाय बता रही हूँ आपको कि रात में सोते समय आप ब्रश करके सोएं और जब सुबह उठे तो आप कुल्ला करके मतलब पानी बगल में रखे रहें और बिस्किट वगैरह कुछ रखें, उठने के पहले ही कुल्ला करके आप 2 बिस्किट खा के और 5-10 मिनट लेटे रहें बिस्तर पे, फिर जब आप उठेंगे तो ना आपको चक्कर आएगा और ना आपको उल्टी होगी। और बाकी उल्टी की दवा तो
3: मीठा खाने का मन ही नहीं होता है।
1: मीठा खाने का मन नहीं होता है
0: ये भी हो, ये भी बहुत चीजें, हाँ जी ये भी बहुत चीज, ये भी बहुत कॉमन है कि इस समय जो है उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं होता है, आलस होता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आती है, भूख नहीं लगती है। बस ये थोड़े समय की बात है, 1-2 हफ्ते बाद आप एकदम अच्छा महसूस करने लगेंगी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
3: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब जांचों की बात कर रहे थे, हम चाहते हैं शॉर्ट में जांचों की बात करके उसके बाद हम प्रसव के बाद की समस्याओं की बातचीत की ओर चलें, तो जांचों की बात।
0: हाँ मैं ये कह रही थी कि जो जैसे ही 12 हफ्ते पूरे होते हैं यानी 11 हफ्ते से लेकर के 13 हफ्ते के बीच में जांच होती है, जो डाउन सिंड्रोम और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह देखने के लिए एक जांच होती है जिसमें ये पता लग जाता है बच्चे में कोई अपंगता नहीं है
1: जी।
0: और दूसरी एक जांच होती है 18 से 22 हफ्ते के बीच, जब इसमें आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो फिर वो जांच करानी आवश्यक हो जाती है। उसमें भी ये चीजें पता लग जाती हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे के, और जैसे कार्डिक इको वगैरह करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड 4.5 महीने में एक जांच होती है जिसको टीफा कहते हैं जिसमें बच्चे में अपंगता पता लग जाती है। बहुत सारे आजकल तो इन सब जो जितने भी ये जांच हो गई है इससे बच्चे की ज्यादा 99.9% सारी चीजें पहले ही पता लग जाती हैं
1: जी,
0: तो ये अवश्य कराएं, मेरा कहने का बस ये मतलब है
1: जी। अगर हम प्रसव के बाद की बात करें तो कुछ महिलाओं को प्रसव के तुरंत बाद कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, कुछ को साल भर तक बनी रहती हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो प्रसव के तुरंत बाद शुरू होती हैं?
0: देखिए प्रसव के तुरंत बाद होने वाली समस्या में सबसे ज्यादा पहली तो है ब्लीडिंग। कभी कभी किसी पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होने लगती है तो ये जरूरी होता है देखना कि भाई आपका जैसे जब डिलीवरी हुई है तो

0: ऐसा तो नहीं कि अंदर खेड़ी का झिल्ली वगैरह कुछ छूट गई हो
1: जी,
0: या फिर ऐसा तो नहीं है कि अंदर जो है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है नीचे एपिजियोटमी लगाते हैं, छोटा ऑपरेशन जिसको बोला जाता है,
1: हाँ।
0: तो वो जो कट लगा है उससे तो कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही है
1: जी।
0: और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और एक कारण ये भी बहुत है कि जब खून की कमी होती है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है
1: जी,
0: क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी कम हो जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि डिलीवरी के समय आपका खून कम ना हो, हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल रहे
1: जी। ब्लीडिंग दोनों को हो सकती है, जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जिनकी ऑपरेशन से सीजेरियन हुई है उनको भी।
0: देखिए सीजेरियन में तो क्या होता है, जब सीजर करते हैं तो प्लेसेंटा और पूरा उसका मेम्ब्रेन देख के सब निकाल दिया जाता है
1: जी,
0: लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है वो चीजें दिखती नहीं है, वो आप एक अंदाज से निकालते हैं या आपको ऐसा महसूस हो जाता है, तो कभी कभी टुकड़े जो है झिल्ली छूटने के चांसेस इसमें रहते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर ये भी कारण है कि इन्फेक्शन हो गया है, यदि इन्फेक्शन हो गया है तो भी ब्लीडिंग बढ़ सकती है, इरेगुलर हो सकती है। वैसे नॉर्मली डिलीवरी के बाद, सीजर और नॉर्मल डिलीवरी के बाद 40 दिन तक ब्लीडिंग होने की संभावना होती है
1: जी। डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं को पीरियड्स ना आने की समस्या होती है प्रसव के बाद, काफ़ी दिनों तक नहीं आता है, और कुछ को तो बहुत अच्छे अंतराल पे होने लगता है, या कुछ को 3-4 महीने के लिए हुआ फिर नहीं हुआ, ऐसी समस्याएं आती हैं।
0: हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जब भी डिलीवरी होती है तो बच्चा दूध पीता है तो हमारे बॉडी में सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, ये वो हार्मोन है जो कि दूध के लिए होता है। तो जब भी सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, यानी यही इसी की वजह से बच्चा नहीं रुकता है। तो जैसे बच्चों को ज्यादातर जब मरीज हैं, यदि साल साल भर दूध पिलाते हैं तो उनको मेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इसकी वजह से एकदम बेफिक्र रहिए कि इस वजह से नहीं आ रहा है। कभी कभी उस बीच प्रेगनेंसी भी रुक जाती है जिसकी वजह से महीना चढ़ जाता है
1: जी। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो
2: जी, मैम प्रिया पाल बोल रहे हैं, मैं बाजार से।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं क्या समस्या है प्रिया जी।
2: मैम मतलब 2 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या कहते हैं, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, वॉमिटिंग होता है मैम, गैस की भी प्रॉब्लम है।
0: देखो ऐसा होता है बेटा कि शुरू के 3 महीने ये प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप ये करिए, जैसे वॉमिटिंग बहुत होती है, आप किसी डॉक्टर को दिखा रही होंगी तो वो वॉमिटिंग की आपको दवा लिखे ही होंगे। उसके सिवा कोशिश आप ये करिए कि खाने पीने में अपने पसंद की चीजें खाइए, ज्यादा मसाले वाली ना खाइए, तली भुनी चीजें ना खाइए, और जो है आपको गैस बनती है तो गैस के लिए भी दवाएं होती हैं, आप उस दवा को आप ले सकते हैं। और गैस बनने का मेन कारण होता है ज्यादा देर खाली पेट रहना या फिर तला भुना खाना, तो इन चीजों से आप बचिए।
2: मैम भूख नहीं लगती है और रोटी तो खाना नहीं पाते, बस चावल ही खाते हैं।
0: हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको जो पसंद है वो खाइए, आप तीनों टाइम चावल खाइए, बस आपके लिए खाना जरूरी है। आप ये ना सोचिए कि हम क्या खाएं, बस कोशिश ये करिए कि आप बाजार की चीजें ना खाइए, जो आजकल गर्मी के दिन है तो बाजार की चीजों में संभावना होती कि वो खराब हो जिसकी वजह से आपको दस्त और या उल्टी बढ़ सकती है। तो
2: मैम अभी कुछ दिनों से ना चेस्ट में पेन भी होता है।
0: हाँ चेस्ट में पेन, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही बेटा, जैसे प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है ब्रेस्ट जो होते हैं स्तन बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आगे जाके उससे दूध निकलना होता, बच्चा फीड करता है, तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेस्ट बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, तो उसके लिए कोई परेशानी होने की बात नहीं है बेटे,
2: वो आगे ठीक हो जाएगा ना।
0: हाँ वो धीरे धीरे आप उसको जो है वो आप उसको आप सहन करने लगेंगी या फिर थोड़े दिन में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा।
1: जी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कुछ और तो नहीं पूछना चाहती? ओके हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपने सभी श्रोताओं को बता दें कार्यक्रम चल रहा है सजीव फोन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और आज का हमारा विषय है गर्भावस्था व प्रसव के बाद की सामान्य समस्याएं व समाधान। हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अयोध्या से डॉक्टर मंजूषा पांडे जी। जी डॉक्टर, हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रसव के बाद की समस्याओं की, कुछ महिलाओं को फैमिली प्लानिंग की सलाह दी जाती है, एक पॉइंट पर हम इस पर बातचीत करना चाहेंगे, दूसरी बात ब्रेस्ट की जो समस्याएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: हाँ देखिए, डिलीवरी के बाद बहुत ये कॉमन समस्या है कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट की, यानी आपका स्तन तन गया है, दूध भर गया है, दूध नहीं निकल रहा है। कभी कभी तो क्या होता है कि बच्चे पीते हैं

0: तो निपल जो है क्रैक हो जाता है और पिलाने में बहुत तकलीफ होती है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो माँ का दूध होता है वो सर्वोत्तम दूध होता है, तो पिलाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजर हो, दो नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो हम लोग तुरंत दूध पिलाना अलाउ कर देते हैं और सीजरियन के बाद भी हम लोग 2 घंटे बाद दूध पिलाना अलाउ कर देते हैं। बस कोशिश ये करना है कि जितना हो सके अपना दूध पिलाएं और दूध इकट्ठा ना होने पाए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ब्रेस्ट आपका भर रहा है दूध निकल नहीं रहा है तो उसको ब्रेस्ट पंप के जरिए आप निकाल सकते हैं, और दर्द ज्यादा हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। एब्सेस बनने की नौबत ना आए, उसमें पस पड़ने की नौबत ना आए, इस बात ये बात बहुत जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय चुकी बहुत कम बचा है, अब चलते चलते हमारे सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, श्रोता बहनों को और श्रोता भाइयों को हमारे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्भावस्था एक जो है बहुत सुंदर, एक महिला के लिए एक बहुत ही सुंदर समय होता है जिसमें आप बहुत मीठा मीठा बहुत अच्छे अच्छे एहसास होता है, इसका पूरा ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद स्वस्थ रहें, जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे जिससे एक स्वस्थ समाज होगा। तो और आप लोगों को मुझे ये भी कहना बहुत जरूरी है कि इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बच्चा होने के बाद परिवार अपना आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा 6 महीने का हो आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाएं, तो उसमें क्या होगा, आपके लिए भी दिक्कत होगी, छोटे बच्चे के लिए भी दिक्कत होगी। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल करके जब भी डिलीवरी हो तो छुट्टी के पहले आप ये जरूर पूछ लें कि हम परिवार नियोजन के लिए क्या करें।
1: जी डॉक्टर मंजूषा पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे सभी श्रोताओं के सवालों के उत्तर दिए। आपको सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: हमारे सभी श्रोताओं को हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से दीजिए सरस्वती पाठक को अनुमति। नमस्कार।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे। ये था हेलो डॉक्टर कार्यक्रम जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या से सुना। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सरस्वती पाठक और आपके फोन कॉल्स को रिसीव कर रहे थे स्टूडियो में अमरजीत सिंह। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631

0: किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीता पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गाने को संगीतबद्ध किया आर डी।

अब आ रहा है लोफर फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, जो कि ये पुरानी लोफर है। आनंद बख्शी का लिखा गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की बनाई धुन पर, आइए सुनें।

मेरे प्यारे सुनने वालों, बस इसी तरह से आकाशवाणी अयोध्या एफएम सुनते रहें। एजे अमरजीत को, अपने रेडियो मीत को अब दीजिए इजाजत। शाम सुहानी प्रोग्राम से अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

बॉलीवुड फिल्मी गानों का ये था शाम सुहानी प्रोग्राम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से, जिसे आपने सुना। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार होंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कर लीजिए।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम बंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः सन्ति घोषिताः। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातृणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलिया देशं संप्राप्तवान्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्व कप क्रीडायां अर्जेंटीना दलं अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायां ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपा नेतृत्वे पश्चिम बंग प्रशासनेन अद्य प्रवर्तमान वित्तीय वर्षस्य कृते स्वीयं प्रथमं पूर्ण अर्थसंकल्पनापत्रं प्रस्तुतम्। अस्मिन् पत्रे सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं वृत्ति सृजनं च महिला केन्द्रित योजनाः विशेष रूपेण प्राधान्यं प्राप्ताः सन्ति। बंगालस्य वित्तमंत्री स्वपन दास गुप्ता 70

0: जनाः प्रथमतलाद् कूर्दयित्वा स्वप्राणान् रक्षितवन्तः। रक्षादलेनापि तान् रक्षितम्। यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरः स्वदलस्य वर्धमानस्य आन्तरिकद्वन्द्वे डाउनिंग स्ट्रीट इत्यत्र स्वस्य कार्यावधिं समाप्य लेबर पार्टीति दलस्य नेतुः पदात् सहैव प्रधानमन्त्रिणः पदात् त्यागपत्रस्य घोषणाम् अकरोत्। स्वस्य त्यागपत्र वक्तव्ये श्री स्टार्मरः द्विवर्षात् प्राक् डाउनिंग स्ट्रीट इत्यत्र स्वस्य आगमनं जीवनस्य गौरवपूर्णतमं क्षणत्वेन स्मृतवान्। कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तयितुं लक्ष्यं स्वीकृत्य राजनीतौ प्रविष्टवान् इति सः उक्तवान्।
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete.
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता अस्ति। विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालये पश्चिमबंग कर्नाटक तेलंगाना केरलम गोवा ओडिशा तथा देशस्य उत्तरपूर्वीय भागस्य पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानमपि ख्यापितम्। अनेन सहैव विभागेन अद्य हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु विद्युत गर्जनम समेत्य झंझावातः तथा तीव्र प्रचंड वायोः संभावना च व्यक्तीकृता। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अर्जेंटीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्ध दश वादने क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमबंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णम् अर्थसंकल्पनापत्रम् उपस्थापितम्। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलिया देशं संप्राप्तवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अर्जेंटीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन कार्यक्रम प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। 6:30 और 15 सेकंड हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर्गाओं के इस पहले विज्ञापन के बाद।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: पहले सुनिए हीरालाल यादव और उनके साथियों से ये खेमटा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
6: खेमटा के बाद ये नक्टा सुनिए, पद्मा गिडवानी और उनकी सखियों की आवाज में गूंजे स्वर्गाओं के कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या FM से आपके लिए।

और अब कार्यक्रम के अंत में कहे लागी दुल्हनिया काओ कहे लागी आओ सुना जाए राजा राम यादव और उनके साथियों से।

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का गूंजे स्वरगाओं के कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अयोध्या FM है। आइए अब सुनते हैं खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: फसल के जोन पैदावार है ज़्यादा से ज़्यादा लिए के चक्कर में कई बार जोन रासायनिक उर्वरक है यका कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर दिए थे। यह से अपने माटी के जोन भौतिक दशा है ना वो धीरे धीरे कहके अब बदले ला गया है। तो होते का कि ऐसे अब पैदावार में भी उतनी बढ़ोतरी ना होत बा जितना कि हम सभी उम्मीद करी थे। भैया अपनी माटी का स्वस्थ रखे के लिए जोन माटी की अवस्था है वो अपने पर्यावरण के अनुरूप परिस्थिति तंत्र के साथ बनी रहे एकरी ताय जरूरी है कि हम जोन भी जरूरी उपाय अपने सभी कह सकी थे वका निश्चित तौर पर करी। भैया अपने माटी में तमाम मेर के जोन हैं जीवित और निर्जीव घटक जैसे सूक्ष्म जीव पौधा जीव जंतु के अनुकूल अंतःक्रिया जोन है ये सब चला करत हैं। पंचो माटी के स्थिति के पता लगावे के लिए कौन स्थिति में हमारे खेत के माटी है इकरे लिए मृदा परीक्षण ही एक वैज्ञानिक विधि है। अगर एक सभी अपने सभी चुनित है माटी के जांच कराई ली थी तो ये पता चल जाता है कि हमारे खेते के माटी में कौन तत्व की कमी है कौन तत्व के भरपाई करे के जरूरत बा और कौन नहीं करे के बा। मुख्य रूप से मृदा स्वास्थ्य के जो गुण हैं वहाँ पहला गुण होते भैया भौतिक गुण दूसरा गुण रासायनिक तीसरा जो है जैविक गुण। ये तीनों गुण अगर विद्यमान है अपनी माटी में सही से हैं संतुलन में हैं तो अपन माटी स्वस्थ है और अगर हमें कोनो मेयर के उतार चढ़ाव कमी बेसी है तो माटी के जो स्वास्थ्य है ई मान के चलें कि धीरे धीरे वो बीमारी की ओर जात बा और अगर माटी बीमार रहे तो फसल के अच्छा उत्पादन अपने सब कैसे उम्मीद कर सकी थे। तो ये नाते भैया हमें भौतिक गुण में देखे के बाय कि माटी के बनावट का बाय उसके संरचना कैसे बाय जल धारण के क्षमता का बाटे और माटी में वायु संचार कितना बा। स्वस्थ माटी का भुरभुरा हो भैया बहुत जरूरी होते ताकि जोन पौधन के जड़ हुए वो आसानी से फैल सकें और भरपूर मात्रा में पोषक तत्व अपने पौधा का दे सकें। भैया रासायनिक गुण के रूप में माटी में जोन सही पीएच मान होते ना 6.5 से 7.5 हो के चाहिए और जैविक कार्बन के मात्रा भी भैया अपने पौधन के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व के उपलब्धता होकर चाहिए। जहाँ ले जैविक गुण के बाद भैया तो माटी में मौजूद जो सूक्ष्म जीव हैं बैक्टीरिया कवक केचुआ जो उनकी कार्बनिक पदार्थन का भैया ना सड़ाए के पौधा का पोषण देत हैं। स्वस्थ माटी के पहचान में अगर बात करी भैया तो भरपूर नमी बनाए रखे के क्षमता पानी के उचित निकास हुए चाहिए जिन्हने से कि कभी भी जल भराव की समस्या न उत्पन्न हुए आवश्यक सूक्ष्म जीव के भरपूर संख्या रहे कि चाहिए माटी में फसल के लिए जरूरी 17 पोषक तत्व के संतुलन आवश्यक है भैया कौन तत्व की कमी हुए तो निश्चित है कि वो का असर अपनी फसल पे उपज पे आए। रही बात मृदा स्वास्थ्य के महत्व के तो टिकाऊ खेती की ताएं भैया स्वस्थ माटी और शुद्ध गुणवत्ता वाली फसल तबे मिलत है जब अपन माटी अच्छी रहते है। पर्यावरण संरक्षण के रूप में अगर स्वस्थ माटी के बात करी भैया तो ई प्रदूषण से भी बचावत है खास करके जल प्रदूषण का कार्बन का भैया सिंह कई के ई जलवायु परिवर्तन के असर का भी कम करत है। तो हम पंच भैया आप सबसे यही कहा चाहते हैं कि अपन खेती अच्छी हुए अपन माटी स्वस्थ रहे इकरे लिए माटी के स्वास्थ्य के हमें ध्यान रखे का है जितना जरूरी पोषक तत्व तो हुए जो दिए का माटी में उतने दिन जाए अनावश्यक रूप से ना तो पोषक तत्व रासायनिक रूप से दिन जाए जैसे खर्चा भी बढ़ा था खेती के लागत बढ़ी आता है और आमदनी कम होता है। तो ये तो रही भैया मृदा स्वास्थ्य के रखे के ध्यान की बात। अब बात करी भैया अपने सबकी खेती किसानी में जोन बाय तमाम और जोन सुधार हैं वो अपनावा जात बाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शामिल किए जात बाय। अब बदलत जलवायु परिवेश में कृषि वानिकी से आर्थिक समृद्धि यानी जोन आज की दशा है यह माँ अपने खेती से ज़्यादा आय कमाए की ताई हमें कृषि वानिकी के रूप में भी खेती में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हो दिवाए खास करके हमारे कृषि वैज्ञानिक भैयन का। तो आज ये विषय पर हम एक बातचीत लेके आवा ही आप सबका सुनवाई खातिर बदलते जलवायु परिवेश में कृषि वानिकी से आर्थिक समृद्धि जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंजलि तिवारी और बातचीत करता है राम प्रकाश पांडे। चलो सुनिए यह बातचीत का।
1: पंचो आज हमारी पंचायती में है डॉक्टर अंजलि तिवारी जो सहायक प्राध्यापक संवर्धन एवं वानिकी महाविद्यालय उद्यान एवं मानकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से है। अयो नहीं सपने सभी जन बना कि बदलते जलवायु प्रवेश में कृषि वानिकी से अधिक समृद्धि कैसे पाई जाए। तो सबसे पहले तो तिवारी जी आपके हमारी पंचायती में स्वागत है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपसे यह जानना चाहिए ना जैसे आपने सबके आज बतिया है कृषि वानिकी पर तो कृषि वानिकी का पंच का सबसे पहले एक का बताऊं।
2: जी कृषि वानिकी

पंचों जय हिंद। पंच भैया देखो, अपने सब पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती किसानी के काम जोन बाय ओका मुख्य धंधा के रूप में अपनावा गवा बाय और खेती से भरपूर उपज पैदा हुए एकरे लिए अपने सभी दिन रात तमाम मेहनत करी थे, तमाम जतन करी थे। लेकिन हुआ थे का भैया ना कि कबो कबो प्रकृति साथ दे गए तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और नहीं तो कबो कबो भैया कम पैदावार मिलत है। मूल भैया हम चाहते थे कि अपने सबके पैदावार अच्छी मिले और एकरे लिए जरूरी होते कि अपनी जो माटी है ना खेत के उ स्वस्थ रहे। अगर धरा स्वस्थ है तो मान के चलो कि अपन जो पैदावार बाय वो बढ़िया मिले, चिंता करे के कोनो बात ना रह जाए। और एक बात और कहा चाहिए थी कि वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए ना तो जो नहीं पैदावार हुआ था खेती किसानी के इकरे कम ज़्यादा हुए माँ तमाम बहुत से छोट मोट कारण भी जिम्मेदार हुए थे। लेकिन भैया हमें लागत है कि अपने सबके जो खेत की माटी बाय एका दुरुस्त रखे के जिम्मेदारी भी अपने लोगन के बाय कैसे ही देखे के मिलत है कि लगातार अपने सभी

0: वह प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि पर वृक्ष, फसल, पशुपालन को भूमि पर वैज्ञानिक तरीके से एक ही साथ किया जाता है।
1: जी
0: जैसे कि मैं किसान भाइयों को सरल शब्दों में बताना चाहूंगी, जहां खेती और पेड़ों को मिलाकर उत्पादन लिया जाए,
1: जी
0: एक ही भूमि पर दोनों फसल का लाभ लिया जाए, आर्थिक लाभ लिया जाए, वही होता है कृषि वानिकी।
1: अच्छा, ये कई प्रकार के हुए थे,
0: जी
1: कौन कौन
0: जी
1: प्रकार के होते, पंच कई हो बता।
0: जी जी कृषि वानिकी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के वर्णन कर देती हूँ।
1: जी
0: जैसे कि कृषि वृक्ष प्रणाली होती है, जिसमें पेड़ और कृषि फसल लगाया जाता है। पेड़
1: यानी
0: को
1: खेती हुए साथे साथे पेड़ हो रहे।
0: जी जी जी और पेड़ों को अगर किसान भाई चाहें तो फसल के बीच में भी लगा सकते हैं और बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं, अपने मेड़ों के चारों तरफ वृक्ष लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि पॉपुलर का पेड़ होता है, जिससे पेपर इंडस्ट्री में काम आता है।
1: जी
0: उसके साथ अगर आप गेहूं लगा दें, सागौन के साथ आप दलहनी कोई फसल लगा दें, तो इस तरीके से कृषि वृक्ष प्रणाली होती है। एक और होता है कृषि पशुपालन प्रणाली, इसमें पेड़ फसल और पशु को भी लिया जाता है, जैसे कि आम।
1: तीनों।
0: जी तीनों लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आम, गेहूं और गाय का भी पालन अगर किया जाए, किसी किसान भाई अगर पशुपालन कर रहे हैं तो उसमें इनको काफी लाभकारक होता है। चारा का भी जो है खेती कर सकते हैं पेड़ों के साथ साथ। तीसरा है उद्यान आधारित प्रणाली, जिसमें फलदार वृक्षों के साथ हम फसल लगाते हैं। और इसके बाद है कृषि
1: छायादार वृक्ष का मतलब
0: जी
1: जैसे हरदी हल्दी लगा
0: हल्दी
1: लिया
0: लगाएंगे।
1: था।
0: जी जी जैसे आपने आम, अमरूद, जो हमारे उद्यान के जो फसल है, जैसे आम, अमरूद, ये सारे लगा दिए। अब इनकी जो छत्र छाया होती है वो काफी बड़ी होती है, जिसकी वजह से छाया मिलता है। तो छाया को कम करने के लिए बीच बीच में हम उसकी कटाई छटाई तो करते ही हैं, लेकिन उसमें हम उचित फसल जो है का चुनाव करते हैं। जैसे खासकर सब्जियों का, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, सूरन, ऐसी सब्जियां हम लगाते हैं तो जो कि छाया में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, और उसके साथ साथ किसानों को फल का भी जो है लाभ मिल जाता है।
1: बिल्कुल, ये
0: जी
1: तो हो गया अपन उद्यान आधारित प्रणाली जो नहीं पंचभैया जानता है। एक बात और आपसे जो नहीं जाना चाहे कि बदलते जलवायु के लिए कृषि वानिकी काहे आवश्यक है, काहे से अपन मेन मुद्दा आज यह है कि ऐसे पंचभैया का समृद्धि मिलता है तो कैसे मिलता है।
0: जी जी जी आज जैसे आपको पता है, सभी किसान भाई को पता है कि आज की खेती के कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, जैसे अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान, सूखा, मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाना, उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाना। ऐसे समय में कृषि वानिकी को अपना कर किसान एक टिकाऊ और लाभकारी विकल्प बनाकर अपना उपयोग और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: जी लेकिन एक चीज और पंच भैया में जाना चाहता हूँ कि अपन जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन का वा और यह परिवर्तन कैसे होता है यह पंच भैया बता।
0: जी जी जलवायु परिवर्तन का अर्थ ये है कि लंबे समय में मौसम के पैटर्न में परिवर्तन। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि जब वर्षा होना चाहिए तब वर्षा नहीं हो रही है, तापमान में इतनी अधिकता हो गई है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, मौसम का परिवर्तन ही है। और ये मौसम का परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ जो है वृक्षों के काटने से, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जलवायु के परिवर्तन को हम कृषि वानिकी अपनाकर बहुत हद तक कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहते हैं, जिसे पेड़ काट दिए थे अपने
0: जी,
1: समय हद ज्यादा वाहन चलाए थे और क्या हो सकता है।
0: जी जी और इसका मुख्य कारण तो ये भी है कि एक तो मानव है, दूसरा प्राकृतिक, जैसे मैंने बताया आपको। मानव कारण जैसे जंगलों को काट दे रहे हैं, अत्यधिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उद्योगों से जो गैस की उत्सर्जन हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है, रासायनिक खाद्यों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है। तो और प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जैसे तापमान का बढ़ना, परिवर्तन होना, मौसम में परिवर्तन होना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, तो ये सारे के मुख्य कारण हैं।
1: बिल्कुल, और यही सबसे अपन जलवायु के परिवर्तन पंचभैया का दिखाता है। एक बात और हमारे मन में आएगी कि कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन का कैसे कम कह सकते हैं, कैसे आप कहते हैं कि कृषि वानिकी चाहिए ऐसा हो सकता है तो पंच भैया कैसे, हाँ कैसे कह सकते हैं।
0: जी जी कृषि वानिकी ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले कार्बन संग्रहण, संग्रहण। पेड़ वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पहले हम ये समझते

0: हैं कि जलवायु का परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिकतर जैसे मैंने पहले बताया कि पेड़ का कटाव हो रहा है, पेड़ का कटाव होने से क्या हो रहा है, कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ रही है। जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो वो जो मिट्टी से, जमीन से जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है उसको कम कर देती है, तो जिसकी वजह से सूखा आना, बाढ़ होना, तापमान का बढ़ना, ये बहुत सारी समस्याएँ इसकी वजह से हो रही है। तो इसीलिए कार्बन संग्रहण जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कृषि वानिकी अपनाएंगे किसान भाई, तो उसके द्वारा जो है पेड़ से तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, मिट्टी का संरक्षण होगा, मिट्टी के कटाव को कम करेगा एवं छाया प्रदान करेगा, जल संरक्षण होगा, वृक्ष भूमि को नमी को बनाए रखेगी, जैसे कि जैव विविधता का बढ़ना, पक्षी जीव एवं सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, खाद्य एवं पोषक तत्वों के रूप में भी कृषि वानिकी आ सकती है। वृक्ष की पत्तियाँ सड़कर गिरती हैं और वो कई तरीके के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो मिट्टी में प्रदान करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और किसान भाइयों को जो भी फसल लगाते हैं उसमें उनकी दुगना आर्थिक लाभ होता है उनका।
1: बिल्कुल, यानी एनपीके वाली जो अपन कमी है वो कैसे पूर कर दिया था
0: जी।
1: एक बात और आपसे जानना चाहिए थी ना, खास करके पंच भैया कहीं कि किसान भैया का ऐसे आर्थिक लाभ का होते कई मन ही करना है, हमार कौन फायदा पाए, तो हर बात में किसान अपन फायदा ही चाहता है
0: जी।
1: तो आर्थिक रूप से किसान का कृषि वानिकी से कौन फायदा मिला था, प्रत्यक्ष पहले बताओ।
0: जी जी जी, इसको कह सकते हैं दो लाभ है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष लाभ
1: जो उन्होंने दिखाए पर है, हमारे लिए मना है कि जो उन्होंने दिखात हुए हमें हाँ ये फायदा मिली
0: जी,
1: और डॉक्टर बहनी यह बताई रही ये हमें दिखाता है, बताओ कौन
0: जी। तो उसमें सबसे पहले तो अगर पेड़ लगाएंगे तो उनको लकड़ी से आय मिलेगा,
1: हाँ ये फायदा तो हो गया।
0: दूसरा, अगर वो उद्यान फसल लगाते हैं तो उसमें फल का उत्पादन होगा उनका,
1: लकड़ी और फल लेकर पंच भैया जाएंगे, बहुत सही गिना।
0: उसके बाद फिर चारा के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारी पेड़ों की पत्तियां जो है जानवर खाते हैं उसके रूप में, ईंधन के रूप में वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेड़ों के लगने से जो उनकी मिट्टी की उर्वरकता, जैसे मैंने पहले बताई कि उसकी पत्तियां जो है वो गिरती हैं, सड़ती हैं और नए जो है उर्वरक खाद्य तैयार करती हैं। अप्रत्यक्ष लाभ ये है, जैसे उर्वरक का खर्च घटता है, सिंचाई का खर्च जो है घटता है, नमी बनी रहती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है, तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जिससे किसान भाई दुगना कमा सकते हैं।
1: यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बात जान गया है पंच भैया कि अगर हम कृषि वानिकी का उपयोग करी थी तो ये हमारा आर्थिक लाभ हुए। किसान के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, कौन चीज वे लगावे तो उनका सबसे अच्छा रहे
0: जी। जी, पहले तो मैं यही बताऊंगी कि किसान भाई अपनी जगह, अपने समक्ष आसपास की जलवायु तापमान को देखते हुए वृक्ष लगाएं। जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में कौन सी वृक्ष सबसे ज्यादा हो सकती है उसको देखकर लगाएं। यहाँ के हिसाब से मैं कुछ लकड़ी हेतु जो है आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे सागौन हो गया, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सीसम हो गया और महागोनी हो गया, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनको लगाकर अपनी आय दुगनी कर सकते हैं।
1: एक चीज और, चारा कितना अलग बताओ, फल कितना अलग बताओ।
0: जी जी, चारा के लिए जैसे सुबबूल हो गया, बबूल हो गया, तो इस तरीके के पेड़, फल हेतु आम, अमरूद, आंवला, बेल, ऐसे कुछ पौधे लगा सकते हैं जिससे उनको दुगनी आय मिल सकती है।
1: बिल्कुल, यानी पंच भैया का ये सब ध्यान दिए का जरूरत यह है। एक बात हमें और समझता आवत यह है, चला चला तो हमारे मन में जाता ना कि कृषि वान की पंच भैया अपनावता है, वह समय उनका का ध्यान रखे का है, कैसे पेड़ कैसे लगावे का है, कितनी दूरी रखे का है, का चुनाव करे का है, यह बारे में थोड़ा बताओ।
0: जी जी, सबसे पहले तो पेड़ लगाते समय उनको सही दूरी की, बहुत उचित दूरी पर लगाना बहुत ही आवश्यक है।
1: अगर नगीचे हो जाए तो फिर फलत में दिक्कत जाए और ज्यादा दूर हो गया तो फिर भाई मैं पेड़ और रह सकता
0: हूं। तो उसकी एक उचित दूरी होती है, जैसे किसी एक पेड़ का मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। जैसे अगर आपको कैजुरीना का पेड़ होता है जिसको झाऊ को बोलते हैं, उसको भी बहुत किसान भाई लगाते हैं, सागौन लगाते हैं, उसको 10x6 की दूरी पे जो है मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, तो वो बहुत उचित दूरी होती है और उसके बीच में जो जगह बचती है उसमें किसान भाई अपने पौधे फसल लगा सकते हैं। दूसरा, स्थानीय जलवायु के अनुसार वृक्ष चुने, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुउद्देशीय वृक्ष चुने जिससे लकड़ी भी मिल जाए, उनको चारा भी मिल जाए, ईंधन भी मिल जाए, तो इस तरीके से बहुउद्देशीय वृक्ष चुने। कौन से वृक्ष के साथ कौन सी फसल लगानी है ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आम के साथ हम गेहूं और धान की खेती करेंगे तो उसमें किसान भाइयों को आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। हल्दी की खेती करें।

0: जो है प्याज की खेती करें, लहसुन की खेती, जो जमीन के अंदर होते हैं फसल, उनको उद्यान फसलों के साथ करें। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि किस वृक्ष के साथ कौन सी फसल लगाएं, इसका ध्यान रखें, नियमित उसकी छटाई करें। आजकल एकल खेती से आगे बढ़कर एकीकृत खेती की आवश्यकता है, जो कि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा देती है, किसानों की आय बढ़ाती है, पर्यावरण से बचाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखती है।
1: बिल्कुल, चलत चलत जोन पंच भैया आपका रेडियो सुनता है, उनसे आप क्या कहा चाहिए?
0: जी, मैं चलते चलते किसान भाइयों को कहना चाहूंगी कि बदलते जलवायु में कृषि वानिकी केवल खेती का विकल्प नहीं है, बल्कि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत माध्यम है। यदि किसान भाई अपनी भूमि और परिस्थितियों के अनुसार कृषि वानिकी अपनाते हैं तो कम से कम जोखिम में अधिक स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि एक किसान एक खेत अनेक लाभ, यही है कृषि वानिकी की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया तरीके से बता दी ना अपने, डॉक्टर अंजलि तिवारी जो नई सहायक प्राध्यापक संवर्धन एवं वानिकी महाविद्यालय, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हमारी पंचायती माई, बदलते जलवायु प्रवेश में कृषि वानिकी से अधिक समृद्धि के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। जरूर पंच भैया ना आप जोन बताएं उन पर सब पर ध्यान दे के वैसन करिए और खूब लाभ कमाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भैया देखो, अपनी खेती किसानी के लिए तमाम जोन बातचीत जानकारी हुआ थी ना, इका हम यही वाले कार्यक्रम में शामिल करी थे कि नई नई बात, नई जानकारी, वैज्ञानिक तरीका, ये सब आप सबका मालूम रहे तो निश्चित तौर पे अपनी खेती से हम उचित और आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ पाओगे। तो बदलते जलवायु परिवेश में कृषि वानिकी से आर्थिक सुधार, डॉक्टर अंजलि तिवारी और राम प्रकाश भैया के बातचीत रही, आप सुनी नहीं, अपनी खेती किसानी में अपनावे निश्चित तौर पर लाभ हुए। अब हम बातचीत के लिए आपसे फिर पंचायती में मूल थोड़ा देर रुक के
3: सुनत हूँ। सखी सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
7: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
6: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
7: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
8: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
8: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
9: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com।
10: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
11: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
12: नहीं अछूता हो जिस
11: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: देखो पंच भैया, आकाशवाणी के माध्यम से तमाम जो जानकारी है, सूचना है, मनोरंजन है, ये कुल अपने सबका मिलत है और अपने सब ही अपने जीवन माया का उतारित है और उसके फायदा भी उठाई थे। लेकिन पंचायती में अब समय है भैया गीत गौनई सुने के। अवधराज मौर्या और उनके साथी भैया सुनाए रहा है किसानी गीत, पहले एक सुना जाए तो आगे बातचीत की जाए।

सरपंच भैया, ये तो रही गौ नई मेहनत से खेती किसानी के काम कीन जाए तो निश्चित है कि अपने सबका लाभ हुए, अच्छी पैदावार मिले, और पैदावार मिले तो अपने सबका बाजार भाव की जानकारी भी होप जरूरी होते भैया। तो अपने जनपद के अयोध्या मंडी से जोन बाजार भाव हमें आज मिला है वो आप सबका हम बतावत चली। चावल कामन 3100 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2560 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2350 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द काली 9300 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6450 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 7200 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर दाल 11000 रुपया प्रति क्विंटल, आलू सफेद 890 रुपया प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1450 रुपया प्रति क्विंटल, टमाटर 2500 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन 7200 रुपया प्रति क्विंटल के भाव रहा, तरोई 1470 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 1820 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन 2020 रुपया प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3000 रुपया प्रति क्विंटल, कद्दू 950 रुपया प्रति क्विंटल के भाव रहा, अदरक 9000 रुपया प्रति क्विंटल के भाव रही, शिमला मिर्च 3800 रुपया, भिंडी 1670 रुपया, लौकी 1450 रुपया, करेला 1700 रुपया।

रुपया, केला पक्का 2900 रुपया प्रति क्विंटल, नींबू 5800 रुपया प्रति क्विंटल, पपीता 2800 रुपया प्रति क्विंटल, सेब 12250 रुपया प्रति क्विंटल, अनार 7300 रुपया प्रति क्विंटल, आम 3800 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5200 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी 4130 रुपया प्रति क्विंटल के भाव रही। तो ये तो रहा भैया बाजार भाव। अब लगे हाथ मौसम संबंधी जानकारी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मिली है, वो का हम बतावत चलिए आपका। तापमान अधिकतम 41.0 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 77%, न्यूनतम 46%। हवा की गति 5.0 किलोमीटर प्रति घंटा रही, दिशा उत्तरी पश्चिमी रही। पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छावा रह सकत है, वर्षा के तो आसार नहीं है भैया। औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे के आसार बाय, एकरे कारण से लू जैसन स्थिति आगे भी बन सकत है। तो ये तो रही बाजार भाव मौसम संबंधी जानकारी। और आपका बताओ चली, कल कार्यक्रम हुए किसान बाड़ी, चर्चा हुए बकरी पालन कर अतिरिक्त आमदनी का स्रोत, और भेंटवार्ता भी सुनने को मिले कृषक महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास, डॉक्टर जेवा जमाल ये पर जानकारी दी है। तो इस तरह से कल के कार्यक्रम रहे। मूल भैया अब घड़ी का इशारा है कि आप सबसे विदा लिए के समय हो दबाए, बस हम यही कहा चाहे थे कि आप सभी निकी तना से रहें, अच्छे से अपनी खेती किसानी के काम करें, देखभाल करें, समय से बुवाई समय से कटाई ई कुल का ध्यान रखिए, तो अपन खेती अच्छी हुई, पैदावार मिले और अपन सबके घर जोन बाय वो समृद्धि की ओर बढ़े, खुशहाली आए। और अब तो हम चाहिए थे कि आपसे विदा ली, तो हमें यानी मतुले भैया का अनुमति दियो, पंचो जय हिंद।

खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी अयोध्या एफएम से आपने सुना। 7:15 होने जा रहे हैं। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले सुन लीजिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। पर फिल्मी गानों का प्रोग्राम गीत गुंजन होगा। महफिले गजल प्रोग्राम सुनिएगा 9:15 से और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और अब कल के कार्यक्रम। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिनभर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कीजिएगा। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम सुनिएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इसके बाद स्मृति चतुर्वेदी की वार्ता सुनिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय और राष्ट्र को योगदान उनका। समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी और फिल्मी गाना सुनवाया जाएगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00 से 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। सुबह 10:00 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले होंगे। आकाशवाणी अयोध्या एफएम से दिन 12:30 से लोक गीतों का लोक रंग कार्यक्रम होगा। दिन 1:00 से कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में फेसबुक श्रोताओं के कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत प्रोग्राम 1 घंटे का सुनवाया जाएगा। कल दिन में 2:00 से अगर फिल्मी गीत गजलों का गीतांजलि प्रोग्राम। 2:15 से दोपहर समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में चर्चा का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इसके बाद पूनम सूद से उनकी कहानी सुनिएगा, विधवा कोई रंग नहीं, जो शहरी विधवाओं पर केंद्रित ये कहानी होगी। दोपहर बाद 3:00 से NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित उमंग कार्यक्रम आप सुनेंगे। 3:30 से लेकर शाम 5:00 तक केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से आप सुनेंगे। युवावाणी में कल शाम 5:00 चर्चा का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र सेवा दिवस। दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इसके बाद भारतीय इतिहास से सेगमेंट में गदर आंदोलन के बारे में बताया जाएगा और चक्रव्यूह के 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और फिल्मी सॉन्ग सुनवाया जाएगा। लोकगीत कार्यक्रम 5:30 से 6:10 से शाम सुहानी प्रोग्राम

गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम 6:30 से किसानवाणी कार्यक्रम में कल महिला कृषकों के लिए यह कार्यक्रम होगा। 6:45 से चर्चा का टॉपिक बकरी पालन अतिरिक्त आमदनी का स्रोत। इसके बाद डॉक्टर जेबा जमाल से मंजू मौर्य की बातचीत सुनवाई जाएगी, कृषक महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास। इसके बाद यशवंत पटेल से भी की गई एक बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, किसान समृद्ध के 12 साल, एकीकृत बागवानी मिशन और कृषि यंत्रीकरण के बारे में। अलावा इसके बाजार भाव, मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। अयोध्या आकाशवाणी एफएम से ही रात 8:15 से कल गीत गुंजन प्रोग्राम, 9:15 से महफिल गजल और 9:30 से आधे घंटे के लिए हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। रात 10:00 कल खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे। और विविध भारती के राष्ट्रीय और केंद्रीकृत कार्यक्रम समय समय पर आपको हम सुनवाते रहेंगे, कल की सभा में भी। अभी आप कार्यक्रम रूपरेखा में आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। यह है आकाशवाणी का अयोध्या एफएम 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे, कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
8: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, इनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है।

0: के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी क्यों हुई इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
1: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद

0: ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं बरेली इज्जतनगर पीलीभीत पूरनपुर मैलानी गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर सीतापुर सिधौली मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया गोरखपुर संत कबीरनगर कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी का अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के संबंध में एक सूचना सुन लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा दृढ़ संकल्प क्षमता उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा 31 जुलाई 2026 को प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है।

आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। बच्चे स्व नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट है https://awards.gov.in पर विजिट करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की स्टूडियो वॉच में शाम के 7:33 हुए हैं और अब हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं विविध भारती मुंबई से।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है खिलौना। पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नख्मा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना।

हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत।

0: भी होगा आपका ये अखबार? सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको? ये सारा दिन यही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े हैं तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर के कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
0: धोखा?
1: भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
0: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक उसे?
1: भगवान क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
0: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
1: ओह गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
1: हाँ, मुझे भी,
2: मौसम बहुत अच्छा।

0: यहाँ भी
1: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई।
0: किसके साथ?
1: किसके साथ
0: जी? वो
1: मेरा मतलब है।
0: बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
1: जी। वो दादी
0: कौन है? वो
1: दादी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है। अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और दादी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है, इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
2: और
1: माँ धार्मिक विचारों की है।
2: अच्छा?
1: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी। मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
2: क्या?
1: स्त्री सुबोधनी।
2: स्त्री सुबोधनी?
0: शाबाश बेटा, शाबाश। मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा?
1: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
0: क्यों क्यों?
1: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेडअप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं। रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर?
2: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
1: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
0: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ, वो एक कप चाय।
2: हे भगवान।
1: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी। वो
0: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
1: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ। क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो, बंद कर दिया। मम्मी डैडी
0: क्या हुआ?
1: शोभा डैडी।
2: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
1: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
2: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख लूं।
1: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
2: अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
1: सारा घर कबाड़खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
0: मगर वो चाहे तो।
1: डैडी ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं, तेजी से उठिए ना प्लीज। भाग कर जाइए और शेव कीजिए। अच्छा, जी हाँ अच्छा, शेव कीजिए और कपड़े पहनिए। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
0: अरे तो
1: अगर मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप है कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
0: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी देखो।
1: बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए, संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्यों सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो, हाँ रसोई संवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
2: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती
1: हूँ। ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए। और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ ये अखबार है, हाँ ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है, वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के डब्बे। हमारा घर है या किताबें, वाह सब किताबें भी यही है, चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
2: हाँ बेटी।
1: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। वाह मम्मी कितनी सुंदर लग रही हो, ये हुई ना बात।
2: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो, सुनो अरे देखो तो कैसे लग रहे हो, चलो चलो चलो चलो चलो, चलो
1: मम्मी मैं भी तैयार हो लूं।
2: चलो।
1: मेरे बुशर्ट का, बुशर्ट हाँ मिल गई, लीजिए। अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल। वो हो हाँ ये भी है, मिल गई। ओफो ये घर है या कहाँ? ला ला ये हुई ना बात डैडी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
0: हीरो के बेटे मुझे गर्मी लग रही है।
1: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी, बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी मम्मी भी कैसे जंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ आओ,

0: यहाँ बैठो, हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी आप इनके साथ, बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ, हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कितनी सुंदर जोड़ी है।
1: मगर बेटा
0: बस डैडी बस बस बस बस बस बस बस हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए, हाँ
1: ऐसे।
0: और मम्मी मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए,
2: ला मुझे दो।
0: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
2: ठीक है।
0: हाँ हाँ बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए,
2: बिल्कुल पगला है ये तो।
0: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई, आया अभी आया। शोभा आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो?
3: नहीं रमेश मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
0: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
3: हाँ। सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही, ओके बाय।
0: मगर मगर सुनो तो, शोभा शोभा गई। डैडी वो
1: क्या है,
0: किताब देकर चली गई
1: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
0: मगर मगर वो
1: चुप बैठ, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
4: रमेश के मुंह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
0: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
1: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
3: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
1: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज, हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर, हाँ इस तरह।
0: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
3: अच्छा बेटा।
1: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर, वो कहाँ है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, एश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए, और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की, और अब मैं सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
3: ये लीजिए चाय।
1: हाँ ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
3: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
1: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
0: अच्छा डैडी। शोभा
3: है, इतना घबरा क्यों गए?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
3: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
0: एतराज नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर मगर तुम तो।
3: वही मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
0: सॉरी।
3: नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी।
0: नमस्ते नमस्ते
3: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
0: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
3: जी नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
5: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
3: धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
5: जी।
3: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
0: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
3: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर ना हो कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना, कहीं बैठने लगो तो यहाँ ना बैठना बेटा अभी ठीक किया है।

0: ये लेट न लगो तो। यहाँ नहीं शोभा जी, अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं। अंदर जाने लगो तो। अरे रा रा रा रा, इधर नहीं आना शोभा रानी, अभी सफाई की है। कुछ उठाने लगो, मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
1: लेकिन शोभा, घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
0: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की केरेस खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे। घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
2: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: विविध भारती के प्रोग्राम्स अब हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 से, जहां से प्रोग्राम होगा ढलती जाए रात, और उसमें सुनेंगे आप पुराने सदाबहार गाने। लेकिन इस वक्त क्या सुनने जा रहे हैं, इस वक्त जी हां, आप कनेक्ट हो चुके हैं आकाशवाणी अयोध्या FM से 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर देश और दुनिया में आकाशवाणी अयोध्या FM को सुना जा रहा है। तो आपका रेडियो मीत अमरजीत जी हां प्रोग्राम करने को तैयार है स्टूडियो में गीत गुंजन बॉलीवुड फिल्मी गानों का, बस थोड़ा सा इंतजार और
1: समय पर बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, बढ़िया है, मजे में हैं? जी हाँ, हंसते गाते मुस्कुराते सेहतमंद और दुआओं में आपने मुझे याद कर लिया तो मैं पहुंच गया आपके पास हवाओं की तरंगों पर सवार होकर 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इंटरनेट के जरिए भी हमारी आवाज को सुना जा रहा है प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। गीत गुंजन प्रोग्राम, आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत, मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए पहले आज बात कर ली जाए 22 जून की, इतिहास में क्या कुछ घटा आज के दिन, उन बातों को याद कर लिया जाए। 2007 में आज ही के दिन यानी 22 जून को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी थी। 2016 में इसरो ने PSLV-C34 यानी 34 के माध्यम से एक साथ 20 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था, एक दो नहीं पूरे 20 उपग्रहों को एक साथ भेजा था। सौरभ गांगुली जो लॉर्ड्स में अपने टेस्ट डेब्यू मैच में जिन्होंने 131 रन बनाए थे आज ही के दिन 22 जून को, तो यही से उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया था 1996 में आज ही के दिन। 22 जून 1555 में हुमायूं ने सिंधु नदी पार करके लाहौर पर कब्जा कर लिया था और सिकंदर सूरी को दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया था। और 22 जून 1880 में असम के महानतम समाज सुधारक, विपुल लेखक, कवि, संपादक, पत्रकार और वकील नीलमोनी फुकन का जन्म असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था। तो चलिए, ये होगी इतिहास की बातें, कुछ और बातें भी करेंगे, उसके पहले क्यों ना एक बढ़िया सा गाना चला दिया जाए, और वो गाना जी आपको भी कुछ ठंडक पहुंचाएगा क्योंकि गर्मी तो पड़ी रही है, गर्मी की भी बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। बेमिसाल फिल्म से आइए सुनिए गाना।

और अब जी हाँ बात करने जा रहे हैं अमरीश पुरी की। पूछेंगे क्यों तो वो भी पता लग जाएगा आपको कि क्यों उनको हम आज याद कर रहे हैं। वैसे तो कलाकार हमेशा ही याद रहते हैं। अमरीश पुरी को बॉलीवुड में एक लंबे और कठिन दौर से गुजरना पड़ा। उनकी मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। अमरीश पुरी के चचेरे भाई केएल सहगल संगीत जगत के महानायक रहे और दो बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी सिनेमा में काफी कामयाब रहे, लेकिन इसके बावजूद अमरीश पुरी को अपनी राह खुद बनानी पड़ी। होता है कभी कभी ऐसा।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून यानी कि आज ही के दिन 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ। युवा उम्र में वो अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने फिल्मों में हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिए, लेकिन वो पहली कोशिश में असफल रहे। इसके बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी और नौकरी होने के बावजूद उनके अंदर का कलाकार हमेशा उन्हें अभिनय की ओर खींच रहा था। करीब 21 साल तक नौकरी करने के बाद जब उन्हें एक्टिंग में अच्छे मौके मिलने लगे तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 40 साल की थी। उनका शुरुआती फिल्मी सफर छोटे किरदारों से शुरू हुआ। अमरीश पुरी का 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों की फिल्मों ने उन्हें अभिनय को एक अलग ही पहचान दे दी। निशांत, मंथन, अर्धसत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और पसंद भी किया गया। 1980 में आई फिल्म हम पांच के बाद उनकी पहचान एक बड़े खलनायक रूप में बनने लगी। इसके बाद तो विधाता, नायक, लोहा, दामिनी, फूल और कांटे, हीरो, मेरी जंग, नगीना और कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए। फिर साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसमें उनका किरदार मोगैम्बो इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें लोग उसी नाम से जानने लग गए थे, पहचानने लग गए थे। मोगैम्बो खुश हुआ। अपने करियर में अमरीश पुरी ने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें थिएटर के लिए 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा मेरी जंग, घातक, विरासत जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। अमरीश पुरी के जाने के बाद भी उनकी आवाज, उनके जो किरदार हैं अलग अलग फिल्मों में, उनका जो अभिनय है उसको आज भी हम सब भूले नहीं हैं, दिलों में जिंदा हैं अमरीश पुरी।

0: मिड ब्रेक आ रहा है, जाइएगा नहीं कहीं।
1: सबसे बड़ा है मुसाफिर।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हेलो
5: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
6: माय नंबर इज
7: 7376804090।
0: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। तो ये प्रोग्राम तो शुरू होगा 9:30 से, जहां आपकी आवाज भी मेरे आवाज के साथ, जी हाँ, मिल जाएगी और गूंजेगी जहां तक आकाशवाणी अयोध्या की आवाज फिजाओं में जाएगी। फिलहाल तो ये गीत गुंजन प्रोग्राम है, कुछ और बात कर ली जाए। जून का महीना खत्म होने को है, तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सभी को पता है। आज 22 हो गई है, कुछ दिन के बाद जून का महीना खत्म हो जाएगा। लेकिन साहब ये बात नहीं है, बात यह है कि मानसून बेहद

कमजोर है। अभी सोच रहे होंगे कि इन दिनों बारिश तो हो ही जाती थी, गर्मी से निजात तो मिल ही जाती थी, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा। मानसून में 46% बारिश की कमी दर्ज हुई है। जी हाँ, देश के 126 साल के रिकॉर्ड में ये दूसरा सबसे सूखा जून है। भारत में चल रहे मानसून सीजन की शुरुआत काफी चिंताजनक रही है। 21 जून 2026 तक देश में औसतन सिर्फ 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक 84.4 मिलीमीटर बारिश होती रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये 46% की कमी है। इस शुरुआती कमी से खेती, जल स्रोतों और किसानों के लिए आने वाले महीनों में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो मानसून की इस कमजोर शुरुआत ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। इसके कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। धरती पर पेड़ काटते चले जा रहे हैं, कंक्रीट पर कंक्रीट बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। मौजूदा स्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। वैसे सबसे बड़ा जो कारण है प्रशांत महासागर में अलनीनो का, जी हाँ, जो सीजन के आगे बढ़ने के साथ साथ मजबूत होने की उम्मीद है। अलनीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में सतही पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, इससे दुनिया भर का मौसम बिगड़ जाता है। भारत में भी बारिश जो है कम हो जाती है अलनीनो की वजह से। अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सुपर अलनीनो भी आ गया है। तो देखिए दुनिया में क्या कुछ होता है, क्योंकि काफी कुछ बदल रहा है दुनिया में, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बदल रहा है। यहां पर बस गाना बदल रहा है, वो गाना भी बहुत ही बेहतरीन आज चुनकर लाए हैं। क्या बात है भाई, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज होगी प्यार की जीत फिल्म से। प्यार का संदेशा ला, कुछ याद आया आपको गाना? याद आ गया ना? जी हाँ, ये गाना पहले हम बहुत बजाते थे और आज मन हो आया, गर्मी के मौसम में अगर गाना ये नहीं बजेगा तो फिर कब बजेगा? तालों में ताल, नैनी ताल, बाकी सब तलैया ता।

तो बस देखना आपको है कि इस गाने की कॉपी कितनी जल्दी होती है, कहीं और नहीं आप ही किसी आकाशवाणी अयोध्या एफएम पर ही होगी, बताइएगा। गाने तो एक से एक रखे हुए कंप्यूटर में ना, कोई डुबकी लगाना नहीं चाहता। डुबकी जितनी गहरी होगी आपको मोती उतने ही अच्छे मिलेंगे। एफएम ध्वनि तरंगों पर सुरीला सफर है ये आकाशवाणी अयोध्या से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, और प्रोग्राम है गीत गुंजन आपके रेडियो मीत अमरजीत के साथ। बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, इधर जाएं उधर जाएं मतलब ही मतलब है जिधर जाएं, ऐसी दुनिया हो गई है ना। इधर जाएं कि उधर जाएं मतलब ही मतलब है जिधर जाएं, लोग मुरीद हैं सुंदर शक्लों के हुजूर, लोग मुरीद हैं सुंदर शक्लों के हुजूर, हम खूबसूरत दिल लेकर किधर जाएं। चलिए जहां भी जाएं बस गाने सुनाते जाएं, दिल की बातें करते जाएं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है आकाशवाणी अयोध्या एफएम पर या फिर माइक्रोफोन के सामने।

बस मेरे पास इतना ही वक्त बचा है जो आखिर में हम कहते हैं, और कभी कभी आप शिकायत भी करते हैं कि आपने प्रोग्राम के आगाज में उस दिन ये बातें नहीं बोली, प्रोग्राम के एंड में आपने ये नहीं कहा। तो बस हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपनों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, सबका।

0: बॉलीवुड फिल्मी गानों का यह था प्रोग्राम गीत गुंजन आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से, जिसे आपने सुना 101.9 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करके, और देश और दुनिया के श्रोताओं ने सुना प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर इंटरनेट के जरिए। समय मिलाइए 8:45 हो गए हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है,

0: यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलान बतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव

0: गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ।

0: हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 26 Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में
2: 9:15 हो चुके हैं। पेश में खिदमत है प्रोग्राम आपके लिए महफिल गजल इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
3: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
6: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 9116747446।
8: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
9: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
8: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
9: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
8: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: महफिल गजल प्रोग्राम में तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम के आगाज में लीजिए ये गजल सुनिए मरहर उदास की आवाज में।

0: कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। आपने मनहर उदास की आवाज में ये गजल सुनी। अगली गजल एक ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा।

0: फैजाबाद अयोध्या, फोन करें 9838100840।
1: और प्रोग्राम के आखिर में अनूप जलोटा की आवाज को सुनिए।

0: जुड़ा की गाई इस गजल के साथ ही आज का महफिल गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह है आकाशवाणी का अयोध्या एफएम 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हेलो अयोध्या प्रोग्राम, बस इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं

0: एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने FM 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
1: का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। आपका रेडियो मित्र अमरजीत आपसे बातें करने को तैयार है, आपके गाने सुनवाने को तैयार है। बस आपको नंबर मिलाना है 7376804090। और ये नंबर किसने मिला लिया प्रोग्राम के आगाज में जी, बताइए अपना नाम कहाँ से।
2: नमस्कार
1: अजी, नमस्कार, नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं।
2: सर गजराज जोशी बात कर रहा था, राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
1: राजगढ़ से?
2: अच्छा। राजगढ़ ब्यावरा।
1: हाँ ठीक है, और क्या हाल चाल है वहाँ पे, क्या हो रहा है आजकल।
2: सर हम खेती किसानी का काम करते हैं और अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बस बारिश नहीं हो रही है।
1: बारिश का इंतजार तो देखिए पूरे कंट्री में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि नहीं
2: जी।
1: हाँ तो आज गाना तहलका से कौन सा सुनवाए आपको।
2: और मुझे सर तहलका मूवी का गाना सुनना है, आपकी थोड़ी आवाज सही से नहीं आ रही है सर मेरे।
1: चलिए जितनी भी आ रही है समझ लीजिए, बता दीजिए गाने का बोल, बता दीजिए किस कौन सा गाना चलवाएं।
2: इसमें तेलका मूवी में सारे गाने अच्छे हैं सर, आप कोई भी गीत बजा दीजिए।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ,
1: चलिए ठीक है
2: सर।
1: चलिए कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, कुछ और कहना है तो क्या डालिए।
2: हाँ सर क्या है कि मैं बहुत समय से 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आती है, बहुत कुछ सिखाती हम लोगों को और हमने आकाशवाणी बहुत कुछ सीखा भी है सर।
1: अच्छा सुनिए, आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को कितने साल हो गया पता है आपको कि नहीं।
2: सर मुझे इसकी तो जानकारी नहीं है मेरे पास
1: जी। इसको अब ये 34 साल में दाखिल हो गया है, 33 साल पूरे कर लिए इसने 17 जून को।
2: बहुत अच्छी बात है सर।
1: चलिए गाना आपका चल चुका है,
2: काफी लंबे समय से लोगों को बहुत अयोध्या, अभी जब मोबाइल एप्लीकेशन पे आया ना तब से बहुत लोग जुड़े हैं।
1: वो तो है, 2020 से हम लोग आए न्यूज ऑन एयर पर, ठीक है
2: जी, जी,
1: शुक्रिया। गाना सुनिए गजराज लोधी जी।
2: बिल्कुल

0: और अब मेरे पास आ कौन गया जी, बताइए अपना नाम, कहाँ से हैं आप?
1: अरे गांव से।
0: गांव कौन सा बता रहे हैं, जिला बताइए अपना नाम।
1: राम सूरत वर्मा।
0: गटई को आपको क्या हो गया, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया क्या आपने?
1: हाँ सर।
0: अरे इतना ठंडा पानी ना पियो कि गटैया बैठ जाए फिर बोल ना पाओ। है राम सूरत वर्मा का कवत हुआ?
1: अरे
0: चलो देखो दुई बात है, तो आप रेडियो कम नहीं कियो और दूसरा आपका गलो साथ नहीं देते है, तो समझे में कुछ आवत नहीं है बतिया, तो लोग का हम का सुनाई। तो आपका गाना, हाँ गाना हम आपका निकाल लिए, गाना बहुत बढ़िया, सुनो गाना अब। हाँ भोजपुरी गाना सुनो।

0: और हेलो अयोध्या में 73-76-80-40-90 नंबर को मिलाकर कोई और भी पहुंच गया तो फिर इनकी भी बारी आ गई प्रोग्राम में। इनसे कहें जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं, कहाँ पे सुन रहे हैं ये प्रोग्राम?
1: पूरे बार सुल्तानपुर से।
0: अरे वाह क्या बात है, और कितने दिन से सुन रहे थे ये प्रोग्राम आप?
1: सर कम से कम 28 अप्रैल को लगाया थे फोन आपके यहाँ।
0: अच्छा जनवरी के बाद अब जाके लगा?
1: अब सर में इतना बिजी रहता है लगता ही नहीं।
0: वो तो है, कुछ लोग देखिए हर चौथे पांचवे रोज आ जाते हैं, हम लोग मना भी नहीं करते किसी को। तो ये बताइए मुगले आजम से कौन,
1: मतलब हम ज्यादा सुनने को आप लोग बात है।
0: ये बात सही है आपकी, क्योंकि जब आदमी नंबर मिलाने लगता है ना फिर प्रोग्राम नहीं सुन पाता है वो।
1: क्या
0: तो प्रोग्राम सुनने का भी मजा लेना चाहिए। कॉल तो दो एक दो महीने बाद भी लग जाएगी, कोई बात नहीं। तो एक दो महीना वैसे हम इतना वेट नहीं कराते हैं, आप कम से कम हफ्ता 10 दिन बाद बहुत होता है।
1: लेकिन हम तो बहुत लेट लगाते हैं।
0: हाँ आप लोगों से बात करके भी अच्छा लगता है, और मुगले आजम से तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे।

0: चलिए कॉल के लिए शुक्रिया। और सब घर में बढ़िया है?
1: हाँ सर सब ठीक है।
0: तो चलिए, मुझे लगता है मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, फागू राम आपका नाम है ना?
1: हाँ जी बाबू राम।
0: बाबू राम की फागू राम?
1: बाबू राम।
0: अच्छा बाबू राम है, BABU ठीक है। गाना सुनिए, कॉल के शुक्रिया आपका।

0: सवाल किसने आजमा लिया है? और नंबर तो कोई ना कोई आजमा ही रहा है, 73-76-40-90। और यहाँ पर कॉल लगी थी शिमला से राकेश जी की, उनकी कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई है। अब उनकी जगह पे धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। आइए पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं। जी बताइए धर्मेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप?
1: दिलासीगंज बाजार।
0: दिलासीगंज बाजार कहाँ पर है ये? अच्छा, और करते क्या हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते।
0: तो खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है आजकल? तो पानी नहीं बरस रहा, पानी की दिक्कत हो रही होगी आपको भी?
1: अरे पानी दिन में दिक्कत रही
0: है। देखिए ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो है अब सूखा पड़ने वाला है।
1: प्रभु की माया क्या है?
0: बस बस। तो गाना आपको नील कमल से कौन वाला सुनवाए? चलिए शुक्रिया कॉल के लिए धर्मेंद्र जी। दिलासीगंज में आपका गाना पहुंच गया।

0: कॉल यहाँ पर फिर से ड्रॉप हो गई मेरे पास। वैशाली तिवारी की मवई कला अयोध्या से लगी थी, उनसे कहेंगे कि आप भी नंबर लगाते रहिए बराबर और फिर से बात हो जाएगी। यहाँ पर राकेश जी की भी कॉल ड्रॉप हो चुकी है शिमला से, लेकिन अब किसकी कॉल मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, आइए उनसे तो बात करें कम से कम। जी बताइए अपना नाम। हेलो
1: जी। हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना। शिव नारायण जी।
1: जी जी जी।
0: नाम मैंने
1: शिवरायन।
0: हाँ, तो क्या करते हैं गोंडा में आप?
1: जी गोंडा में, जी जिला गोंडा है, नवाबगंज मेरा घर है।
0: हाँ, तो करते क्या कुछ काम हम करते हैं, खाली खाते हैं बैठ के बस?
1: नहीं नहीं, खाते नहीं है सर, वही तंबाकू महू काम करते हैं सर।
0: हाँ, उस साइड में तंबाकू की खेती बहुत होती, क्योंकि मैं एक दो बार उधर गया हूँ सर्वे करने के लिए।
1: जी जी।
0: तो नाक पे कुछ बांध लेते हैं कपड़ा वपड़ा की वैसी करते हैं, आदत पड़ गई आपको?
1: नहीं नहीं सर, आदत पड़ गई वैसी।
0: तो नशा नहीं हो जाता फिर?
1: जी
0: नशा नहीं हो जाता है फिर तंबाकू बीनते वक्त?
1: नहीं, तंबाकू की नशा नहीं होती है सर, जैसे बाहर रहता है ना, वो जैसे पसार लगा रहता है ना, जैसे वहाँ सुखाना पड़ता है, उसके बाद में फिर उसको गांज में आती है, उसके बाद में फिर क्या नाम है उसको पानी में भरा जाता है।
0: बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
1: जी जी जी।
0: लेकिन तंबाकू से एक चीज है, तंबाकू से दूर रहना चाहिए, उसका नशा ज्यादा करना नहीं चाहिए।
1: नशा नहीं करते हैं सर, काम की आदत पड़ गई है ना।
0: लेकिन दूसरों को नशा करवाते हैं, ये तो बात सही है ना?
1: नहीं नहीं सब सही है सर।
0: तो आज आपको गाना हम कौन सा सुनवाएं, आपने कहा निकाह फिल्म?
1: निकाह फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: और घर में कौन? और घर में कौन कौन सुन रहा है ये प्रोग्राम?
1: जी हम हैं, मेरी मम्मी है, केवल बस दो ही लोग हैं।
0: तो आपकी उम्र अभी कितनी? हमको तो बहुत बड़े लग रहे हैं आप।
1: कौन मैं? मेरी उम्र 32 साल है सर।
0: हाँ, इतनी तो होगी, आधे पहुंच गए हैं आप। तो दिल की अरमा आंसू में कोई और गाना बताइए।
1: नहीं नहीं, वही दिल की अरमा आंसू सुना दीजिए।
0: इतना रुवंदा गाना ना सुना कीजिए, सैड वाला, अच्छे अच्छे गाना सुना कीजिए ना। ठीक है, हम आपको गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।
1: ठीक, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ।
1: आनंद बोल रहे हैं, अगर हेलो नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी क्या
0: जी?
1: हेलो नहीं लगाना चाहिए, आप सीधे बात करिए, आपकी आवाज़ यहाँ पहुँच रही है। हेलो तब लगाया जाता है कि जब आपको मेरी आवाज़ ना सुनाई पड़े।
0: अयोध्या खंडासा से बोल रहे हैं।
1: तो खंडासा से बढ़िया है
0: जी, बढ़िया है।
1: तो खंडासा में खड्डा बहुत है का?
0: जी जी।
1: तो कितना खड्डा है?
0: गिने, बहुत खड्डा है।
1: गिने हो कौन दिन की नहीं
0: हा?
1: कितना खड्डा है कुल गाँव में आपके?
0: जी ताल वाल ज्यादा है ना, तालाब ज्यादा है।
1: अच्छा, वही गड्ढा बड़ा बड़ा हो के ताल बन गवा। क्या बात है। तो चलिए, जब पानी बरसेगा तो ताल में पानी भरेगा तो आप ही का फायदा होगा, है कि नहीं
0: जी? सर जी।
1: तो नाम क्या बताया आपने
0: जी? आनंद कुमार पांडे।
1: आनंद कुमार पांडे। तो भी पढ़ रहे हैं कि खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
0: हाँ जी सर, खेती करते हैं।
1: तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं?
0: इंटर तक करे हैं सर।
1: तो करे आगे भी पढ़ ले तो भैया
0: जी सर,
1: है ना? तो चलो गाना बताओ, कौन सा सुनवाई आपका?
0: ये गाना महबूबा पिक्चर का, मेरे नैना सावन भादू।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो सावन भादू तो अभी दूर है, देखो अभी गर्मी का महीनों नहीं खत्म हो रहा है, अभी तो पनियों नहीं बरसत है।
0: राजेश खन्ना का गाना ज्यादा सुनते हैं।
1: अच्छा, उनको काका भी बोलते थे ना?
0: काका जी, हाँ काका। उनका गाना मैं किशोर कुमार चौहान बहुत अच्छा लगता है
1: जी। जी बस वही गाना मैंने निकाल भी लिया, आपकी पसंद का गाना। और ये कैसे हो सकता है कि हम आपका गाना ना सुनवाएं? और सब बढ़िया है ना, मजे में है?
0: आज ये सब आशीर्वाद है।
1: चलिए, ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद मत कहिए। आशीर्वाद जो है ईश्वर का सबसे बड़ा होता है कि नहीं? उनके पास फिर मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है
0: जी सर।
1: शुक्रिया कॉल कर।

0: बस प्रोग्राम का आधा वक्त पूरा होने वाला है 10 मिनट के बाद, और मेरे पास जी हाँ लगातार आपकी कॉल्स आ रही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप कॉल मिला रहे हैं, और हर किसी की तमन्ना होती है कि उसकी भी बारी आ जाए इस प्रोग्राम में। तो हम तो चाहते हैं कि आप सभी की बारी आए इस प्रोग्राम में। और देखें अब मेरे पास आ कौन गया इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। जी बताइए अपना नाम। आप रेडियो पर आपकी आवाज मैंने भेज दी है, वहां से बोलिए। लीजिए लगता है कॉल इनकी जो है, एक कॉल आज यहाँ पर और ड्रॉप हो गई, मालती साहू की अयोध्या से। करण अर्जुन का गाना इन्होंने पसंद किया था। जी सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज, आपकी भी सुन लूंगा मैं, कम से कम बता तो दूं जिसकी कॉल कटने के बाद आपकी कॉल आ गई। बताइए अपना नाम।
1: हाँ

0: और अब 73-76-80-40-90 नंबर किसी और के हिस्से में भी आ गया है। देखे किसके हिस्से में आया ये नंबर। जी बताइए अपना नाम। मोहम्मद हारून जी आप आ चुके हैं रेडियो पर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं मुझको?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सरोन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: और सब बढ़िया है गांव में आपके?

0: देखिए अगर आप वहाँ पे आवाज हमारी लौट के आ रही है ना, तो आप मुझको सुन नहीं पाएंगे ठीक से, और ना सुनने वाले रेडियो पर सुन पाएंगे। आपसे मैंने कहा था कि स्पीकर बंद कर दीजिएगा, नहीं किया आपने।
1: स्पीकर तो बंद है ना मेरा, स्पीकर तो बंद है ना मेरा,
0: तो पता नहीं कहाँ से आवाज टकरा के वापस आ रही है।
1: अब मैं स्पीकर तो बंद है मेरा।
0: आप भी मेरे प्रोग्राम में बहुत दिन के बाद आज आए हैं, तो मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि क्वालिटी खराब होती है ना प्रोग्राम की। तो सलामी का गाना मैंने आपका लगा दिया है, कुछ कहना कह डालिए, बताइए
1: जी। सलामी का चला देना कोई सा भी,
0: और कुछ कहना है आपको, गाना चला दे।
1: बस चला दे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती भाई, वहाँ से दिक्कत हो जाती है थोड़ा।
0: नहीं दिक्कत देखिए आप लोगों की ओर से होती है, आवाज अब लौट के आएगी ना तो फिर कोई सुन नहीं पाता बढ़िया आवाज। ठीक है
1: जी, जी।
0: शुक्रिया मोहम्मद हारून जी, गाना सुनिए अपना।
1: धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: यहाँ 10 बजने वाले हैं, बस 1.5 मिनट का वक्त और बचा है इसमें, लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है, 10:30 तक चलेगा। और अब मेरे पास आ कौन गया हेलो अयोध्या में अपनी बात कहने के लिए, नाम बताइए अपना।
1: ऋषिपाल जी।
0: ऋषिपाल जी कहाँ पर सुन रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त?
1: देवरिया गाँव।
0: अरे वाह, देवरिया से तो पहली बार यहाँ पे कॉल आई है और बड़ी खुशी हुई हमको कि देवरिया में। ये बताइए मोबाइल ऐप पर सुन रहे होंगे आप प्रोग्राम तो?
1: नहीं नहीं मोबाइल पे है सर।
0: नहीं मोबाइल में जो FM, मोबाइल में जो FM, सुनिए मेरी बात सुनिए, मतलब इंटरनेट से तो नहीं सुन रहे हैं ना आप जो?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: ओह वेरी गुड, मतलब इतनी दूर तरंगे पहुंच रही हैं हवा के जरिए देवरिया में भी।
1: जी, जी, जी।
0: क्या बात है
1: जी।
0: तो गोरखपुर वहां से कितना दूर है?
1: गोरखपुर जहाँ ये मंदिर है। अरे
0: अल्लाह, अरे किलोमीटर बता दीजिए, किलोमीटर कितना होगा?
1: अरे सर यहाँ से मान लीजिए 20-25 किलोमीटर है जहाँ पे।
0: अच्छा चलिए, गोरखपुर के बॉर्डर पर हैं आप।
1: जी, जी, जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: क्या करते हैं वहाँ पर ऋषिपाल?
1: सर ड्राइवरी करते हैं।
0: ड्राइवरी करते हैं, तो दिन में गाड़ी चलाते हैं कि रात में ज्यादा गाड़ी चलाते हैं?
1: नहीं नहीं दिन में, दिन में, दिन में।
0: कौन सी गाड़ी है आपके पास?
1: किया संतोष है।
0: अच्छा माल वाल ढोते हैं साथ आप?
1: नहीं नहीं किया संतोष है, गाड़ी के
0: यार। अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया है। तो गाना किस फिल्म का सुनवाएं आज आपको? ये आपने बताया था, मेरे ख्याल से आपकी आवाज थोड़ी

आ रही है छुपा रुस्तम से। आपकी आवाज थोड़ी अब रुक रुक के आ रही है। ऋषि जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। चलिए आपसे बातें तो हो गई थोड़ी बहुत, अब अगली बार आइएगा तो ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। गाना सुनिए ऋषि पाल जी, देवरिया में अपना।

0: प्रज्ञा वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हीट स्ट्रोक, लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढक कर रखें, इसके लिए कपड़े, हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
4: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
3: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
4: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
3: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
4: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर न जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
3: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी

0: के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें, ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
1: और अब मेरे पास जी हाँ कौन आया है जी, उनका भी स्वागत करते हैं। नाम बताइए सर अपना।
2: सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है।
1: शैलेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा रेडियो की आवाज़ वहाँ कम रखेंगे तो बातें अच्छी होंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत ही पुराने श्रोता हैं।
2: हाँ हाँ सर, थैंक यू सर।
1: तो ये बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं?
2: सर हम लोग बस्ती के हैं, हरैया क्षेत्र आता है हमारा।
1: तो अयोध्या में अभी भी रह रहे हैं?
2: सर हाँ, अयोध्या में रहते थे, साकेत में करते थे, और हम लोग काफी टाइम से हमगढ़ी में रहे हैं।
1: तो
2: बचपन से मतलब पढ़ाई नजदीक हमारा डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद ही पड़ता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: क्योंकि बस्ती यहाँ से काफी दूर है, छावनी की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो 17 जून को अभी हाल ही में हम लोगों ने 33 साल पूरे कर लिए, और पहले तो फैजाबादी नाम था इस केंद्र का।
2: हाँ सर, वो फैजाबाद था, और ये डेली आपकी फरमाइश नहीं आती थी, हम लोग पत्र भेज कर मन भावन सुनते थे।
1: अब सुनिए मन भावन पे मुझे देखिए, आपने यादें ताजा कर दी मेरी। मैं 93 26 अगस्त को मैंने पहली ड्यूटी यहाँ किया था, और 1995 में हमारे जो उच्च अधिकारी थे उस समय, उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन मनभावन प्रोग्राम आप शुरू कर दीजिए। तो पहला मनभावन प्रोग्राम मैंने ही किया था यहाँ पर, फरमाइशी इकलौता।
2: हमें सब याद है सर, आपकी आवाज सुनकर ही, क्योंकि आप फैजाबाद के थे, तो कोई भी कार्यक्रम फैजाबाद के बड़े होते थे, चाहे वो गवर्नमेंट के होते थे, तो आप अलाउंसर उसमें रहते थे।
1: जी जी,
2: पहले से साकेत में होता था, राम मंदिर का हम लोग ने डीडी नेशनल पे लाइव देखा, आपकी ही आवाज।
1: हाँ, एक बार मैंने भी रामनवमी का जो आंखों देखा हाल दूरदर्शन पे भी प्रेजेंट किया था।
2: हाँ हाँ, पूरे एक डेढ़ घंटे का था, और सब आपकी ने किया था।
1: मेरे ख्याल से 2018 की बात है ये शायद।
2: हाँ, जब वो भूमि पूजन हुआ था।
1: जी जी जी। तो चलिए, आपने नाम बताया शैलेंद्र सिंह।
2: यस सर, यस सर।
1: तो गाना आपको कौन सा सुनवाए? गाना भी आपने बहुत ही बढ़िया पसंद किया, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
2: सर मेरी शादी 2013 में हुई थी, और अयोध्या में ही हुई थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: और वो जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, मतलब कार से, और वो ड्राइवर ने बार बार वही गाना रिपीट कर रहा।
1: वैसे ये गाना जितनी बार सुनेंगे ना उतनी बार अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना, है ना? हीरा पन्ना फिल्म से गाना है।
2: हाँ सर, हाँ।
1: चलिए, बहुत से लोग
2: आप, मतलब मुझे पता सर आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं।
1: जी हाँ, देखिए रिटायरमेंट देखो सभी का आता है, और रिटायरमेंट हम लोग का नहीं, हम लोग तो अनुबंध पे काम करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, कहीं अनुबंध और जुड़ेगा, भगवान जोड़ देगा, तो वहाँ से भी आपको आवाज मिलेगी।
2: इसके बाद हम लोग वहाँ सर मुंबई में रहने लगे थे, तो भारतीय से थे, और मुंबई में मैंने सर योगा से एमए किया है, तो मैं मतलब वहीं पर टीचर था।
1: जी,
2: मेरे पापा कैंसर पेशेंट हुए और एक्सपायर हो गए, तो मैं वापस आ गया।
1: अच्छा।
2: नहीं, मैं वहाँ पर टीचर था, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए। और सर मेरी एक बेटी है प्रेक्षा सिंह और परीक्षित सिंह और भाई पूनम सिंह, ये लोग सुन रहे हैं रेडियो।
1: बिल्कुल सुन रहे होंगे, और आपने जब मुझसे आपकी बातें हो रही ना, वो लोग और खुश हो गए होंगे कि आज देखिए कितने पुराने अनाउंसर से बात उनकी हो रही है। एकदम मनभावन की याद आपने दिला दिया आज। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। फिर किसी दिन और आइएगा तो और भी कुछ बातें करेंगे आपसे। जी जी। हाँ जी, नाम बोलिए।
3: मैं पूनम सिंह बोल रही हूँ, आपकी आवाज़ सर बहुत प्यारी है।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप इनकी वाइफ बोल रही हैं?
3: जी जी।
1: चलिए, आप लोग तो बहुत दिन से आकाशवाणी फैजाबाद से जुड़े हुए हैं, और ये जानकर मुझको बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर, क्योंकि स्थापना दिवस का प्रोग्राम मैं भी करना चाह रहा था, और प्रोग्राम मैनेजमेंट ने हमको वो प्रोग्राम दिया नहीं, तो मैं उस प्रोग्राम से वंचित हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे बातें करते रहिए, अभी 2-3 महीना हम आपके साथ हैं यहाँ पर।
3: जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके सर।
1: जी जी, अभी मेरी आवाज आप सितंबर तक सुनेंगे इस आकाशवाणी अयोध्या से, ठीक है? शुक्रिया कॉल के लिए, शुक्रिया आपका सबका।

0: अब इस प्रोग्राम में जी हाँ वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है, लगातार आपकी कॉल्स आ रही हैं, किसी को नाराज हम करना नहीं चाहते। और कौन आ गया मेरे पास जी, नाम बताइए अपना।
1: सर अन्नू रावत बोल रहे हैं।
0: अन्नू रावत, आपकी आवाज कहाँ से आ रही है, किस जिले से?
1: जी सर हम सहावल से पतनपुर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, यानी आप आकाशवाणी के बहुत करीब ही हैं।
1: जी सर, लास्ट में लगती थी, आज समय से लग गई है।
0: तो आप भी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती है, कितने दिन से सुन रही हैं आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को?
1: सर हम आपसे बता चुके हैं, हमें 21 साल हो गया सुनते हुए।
0: अच्छा, एक प्रोग्राम में आपने बताया था, ठीक कह रही हैं आप, 21 साल हो गया सुनते हुए। अरे बाप रे,
1: सर हम 28 साल के हैं, 21 साल हो गए हमें सुनते हुए।
0: बहुत ही बढ़िया भाई। और ये बताइए, पहले के प्रोग्राम सुनने में अच्छे लगते थे जब केवल एक शिफ्ट होती थी, 5 बजे स्टार्ट होता था और 9:15 बजे बंद हो जाता था, 9:30 बजे।
1: नहीं सर, 9 बजे ही बंद हो जाता था।
0: हाँ, बाद में 15 मिनट बढ़ा दिया गया था।
1: हम ज्यादातर वो सुनते थे सर, हवा महल जो 7 बजे आ जाता था शाम को।
0: हाँ, पहले वो उसका टाइम दूसरा था, है ना?
1: जी सर।
0: तो फिर 2008 में हम लोग दोपहर में आ गए 12 बजे से, 2011 में हम लोग आ गए सवेरे 5:55 से आ गए।
1: नहीं सर, ज्यादा याद नहीं थी बचपन का।
0: चलिए, उस समय क्या था ना कि एक शिफ्ट प्रोग्राम होता था और वो गागर में सागर के समान था, 4 घंटे के अंदर एक से बढ़िया एक प्रोग्राम हम लोग करते थे।
1: ये बात आपने सही की।
0: हाँ। तो आज अनु को गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: सर पूर्वी फिल्म का सुनना था।
0: अच्छा, उसमें एक ही गाना बहुत जबरदस्त है, वही गाना तो नहीं आपने पसंद कर लिया?
1: हाँ सर, हम ये आज की तरफ से सारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहते हैं, सारे श्रोताओं के लिए है ये।
0: आवाज हमारी सी वादी में रहेगी।
1: जी सर, आपकी आवाज इस मतलब की रेडियो पे इस तरह चाहिए गाना है।
0: अब तो हम लोग की आवाजें जो है दूर देश और पहाड़ों पर भी गूंज रही है।
1: जी सर।
0: तो और कौन कौन प्रोग्राम ये सुन रहा है अनु आपके घर में?
1: सर हमारी मम्मी भी जाग रही थी, कह रही थी अपने सर से बात कराना, अगर फोन लगे तो सो गई।
0: अच्छा, आराम करने दीजिए। हाँ ठीक है।
1: और हम दीदी जाग रहे थे। तो दोनों लोग फोन लगाए थे, हमने कहा देखो किसका लगता है।
0: तो आज आपको उम्मीद थी कि आपकी कॉल लग जाएगी इस प्रोग्राम में?
1: सर मैं पूरा उम्मीद था।
0: देखिए, 2 कॉल मेरे पास आज ड्रॉप भी हो गई, वैशाली की कॉल और एक राकेश शिमला से भी, उनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई थी। चलिए, गाना आपका हमने चला दिया, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है,
1: थैंक यू सर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: तो भाई ना हम अपने श्रोताओं को भूल सकते हैं और ना श्रोता ही हमको भूलेंगे। और अब मेरे पास आ कौन गया अपनी पसंद का गाना लेकर। जी नाम बताइए अपना, आगे प्रोग्राम में आप।
1: जी सर, अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना देवकाली को।
0: अरे वाह क्या बात है, आप तो बिल्कुल छा गए हैं आकाशवाणी अयोध्या पर। आप आ जाते तो बाहर से आ जाती हवा, ठंडी ठंडी आने लगती है। अच्छा आपके बगल में एक आवाज आ रही थी, यानी पंखा चलाया था, क्या चलाया था? थोड़ी गर्मी आप सहन कर रहे होंगे ज्यादा।
1: जी सर जी हाँ, पंखा चलाए थे।
0: हाँ वो आवाज उसकी खरखर खरखर आ रही थी ना, तो फिर सुनने में दिक्कत होती लोगों को बातें।
1: जी जी जी सर जी।
0: अच्छा एक बात आपसे कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
1: नहीं सर नहीं मानेंगे।
0: आपका नाम,
1: आपकी बात क्यों मारा?
0: सुनिए सुनिए, आपका नाम अर्जुन है ना?
1: जी सर।
0: तो सोनकर की जगह फोन कर लगाइए अब।
1: फोन कर लगा।
0: क्यों पसंद आया कि नहीं आया?
1: जी सर जी सर।
0: अर्जुन फोन कर।
1: जी सर।
0: इतने मशहूर हो गए आप आकाशवाणी, हमारा कोई एंकर इतना मशहूर नहीं हुआ। चलिए तो आज अर्जुन जी को गाना कौन सा सुनवाया जाए सोनकर जी?
1: दो रास्ते सर।
0: दो रास्ते का कोई खास गाना?
1: बिंदिया चमकेगी।
0: किसकी बिंदिया चमक गई है?
1: गाने बहुत अच्छे हैं सर उसमें ना।
0: गाने तो अच्छे हैं ये, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, और शादियां भी नजदीक आ रही है। शादी किसी की तो नहीं है?
1: शादी तो हमारे बगल में है सर।
0: चलिए उन्हीं को डेडिकेट कर दिए गाना, सुनवाइए।
1: जी सर जी सर।
0: शुक्रिया, गाना सुनिए देवकाली में अपना।
1: जी सर
0: शुक्रिया।

0: और यहाँ पर एक विकेट और गिर गया। आज एक कॉल और ड्रॉप हो गई है चांदनी पांडे की गुंडा से, और बड़ी मशक्कत से उन्होंने भी कॉल लगाई होगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब मेरे पास जी बलरामपुर से कोई पहुंच गया। जी नाम बताइए अपना। बबरची जी, बढ़िया जी जी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है,
1: बहुत अच्छा है, आप बताइए अपना।
0: ये बताइए कि गर्मी के मौसम में भी लोग जो है नॉनवेज खाते हैं ज्यादा क्या?
1: हाँ,
0: वैसे खाना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, जाड़े में ठीक रहता है।
1: ऐसा है मौसम, गर्मी का हो ठंडी खाना तो पड़ेगा ना।
0: नहीं वैसे लोग कहते हैं ना कि गर्मी के मौसम में जो है तेल मसाला जो है बहुत कम यूज करना चाहिए।
1: नहीं बहुत खाते हैं लोग, जो चलिए खाने वाले हैं वो खाते हैं, नहीं खाने वाले नहीं खाते।
0: कुछ लोग ऐसे भी है ना, दिक्कतें आती हैं तब भी खाते जाते हैं, ये भी होता है।
1: सही है
0: वो जीप का जो लालच है ना, उसके आगे वो रोक को भूल जाते हैं।
1: सही है
0: चलिए आपकी भी दुकान चलती रहे। तो गाना
1: भी गर्मी पड़ रहा है, खाने वाले खूब खाते हैं।
0: तो गाना किस फिल्म का सुनवाए आपको?
1: गाना जाने दुश्मन का।
0: जाने दुश्मन का गाना, और क्या हो रहा है आजकल?
1: आजकल क्या हो रहा है, खेती उती का काम हो रहा है, बारिश का इंतजार है।
0: तो गर्मी का मजा ले लीजिए ना पूरा।
1: हाँ तो गर्मी का तो मजा मिल ही रहा है, हमारा तो काम ही है गर्मी वाला, हम पूरा गर्मी तो खाना ही पकाते हैं।
0: काम कर, लेकिन एक चीज है कि गर्मी के मौसम में चूल्हे के पास भट्टी के पास बैठो तो उसका दुगना पसीना अपना खुद ही निकल जाता है कि नहीं?
1: नहीं आदत पड़ जाता है।
0: ये बात तो आपकी सही है,
1: आदत पड़ जाता है सर जी, और कोई नहीं टिक पाएगा।
0: ये बात तो है,
1: आदत बन जाती है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानी दुश्मन से गाना कौन सा चलवाए?
1: तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां।
0: चलिए गाना आ गया आपके पास, कॉल कर लीजिए, शुक्रिया आपका। बलरामपुर में आपके पास गाना पहुंच गया।

0: जी हाँ, वक्त बहुत कम बचा है, अब देखते हैं किसकी से बात हो पाती है। और लेकिन इस वक्त कौन आ गया है टेलीफोन लाइन पर? जी नाम बताइए अपना।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नाम बता दीजिए सबको अपना, आवाज से कुछ पहचाने।

0: चाने लग रहे हैं।
1: लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद,
0: त्रिदेव लाइट वाले, वाह वाह, हरिपुर जलालाबाद, ये कोने साइड में है?
1: ये रायपुर मलबा जहाँ घूमे आवासी ना आप
0: युदा। ओहो, सुहावल साइड की ओर। अच्छा अच्छा,
1: सलारपुर कैसा?
0: हाँ हाँ, वही सलारपुर के आगे सुहावल है।
1: सलार, हाँ,
0: तो ये बताओ कि त्रिदेव नाम काहे रखा गया आपके?
1: अरे तो कही नहीं बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नाम से दियो।
0: उसी नाम से आपने त्रिदेव लाइट वाले मशहूर हो गए। तो गाना पुराना अच्छा लगा था कि नवा अच्छा लगा था?
1: नहीं नवा नहीं अच्छा लगा,
0: पुराना ना। तो आज हम आपका भोजपुरी गाना सुनवाई था, बहुत बढ़िया गाना है ना? और कुछ कहे का है आपका? और कुछ कहो?
1: नहीं कहा, कही कही कहीं चौदह पंद्रह सितम्बर से लाई वही कही।
0: तब तो तुम्हें टाइम मिले ना फिर फोन करे के लिए कि मिले?
1: ठीक है।
0: नहीं ठीक नहीं है, जब अपना धंधा पानी करियो तो फोन थोड़ी करियो हमका।
1: अरे धंधा चला चल रही है।
0: अच्छा बढ़िया है, मैंने आप अपना धंधा भी कर रहे हैं और हमको भी याद रख रहे हैं आकाशवाणी अध्याय को ना। चलिए कॉल के लिए शुक्रिया त्रिदेव जी।

0: और इसी गाने पर कोई और भी बात करना चाह रहे हैं जी, बताइए अपना नाम, कहाँ पर सुन रहे हैं प्रोग्राम?
1: सर हमारा भी तो बड़े नाम है, मैं मऊ चिवाला से बात कर रहा हूँ सर।
0: और क्या करते हैं वहाँ पर?
1: सर हम तो चौकीदारी करते हैं नाइट में सर।
0: अच्छा, तो चौकीदारी करते समय किस बात का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है?
1: सर उसमें ध्यान ये देना पड़ता है, रात में जैसे कि कोई आए ना, खटपट हुआ तो आपको सामान पता लगा, कोई फाल ले गया तो आपका पैसा कट जाएगा।
0: आप लोग डंडा खटाते रहते हैं ना, डंडा जमीन पर पटकते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं
1: जी।
0: तो कुत्ते जब ज्यादा भौंकते हैं तो
1: फिल्म का गाना सुना है?
0: नहीं, कुत्ते जब ज्यादा भौंकते हैं तो उसका इलाज कैसे करते हैं फिर आप?
1: सर वो देखना पड़ता है, तब जाके कुत्ते जैसे भौंके या खटपटाहट हुई तो आदत पड़ गई तो
0: आज ग्यारह। चलिए, आज समय मेरे पास बहुत कम है, गाना किसी और दिन आपको सुनवा देंगे। कॉल के लिए शुक्रिया आपका। कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ थे स्वप्निल मिश्रा, आपका रेडियो मित्र अमरजीत बस हेलो अयोध्या से लेता है इजाजत। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, अभी आपने सुना आकाशवाणी अयोध्या एफएम से ही 101.9 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करके और देश और दुनिया में आकाशवाणी अयोध्या को हमारे श्रोता सुन रहे थे इंटरनेट के जरिए प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। 10:30 हो चुके हैं, अब से लेकर 11 तक विविध भारती से हम आपको जोड़ेंगे, जहां से इस वक्त प्रोग्राम होने वाला है ढलती जाए रात, जिसमें पुराने गाने आप सुनेंगे।

0: जाहिरात प्रोग्राम में अभी आप कुछ पुराने गाने सुन रहे थे, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई से। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। रात के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री

0: शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. इन